0: रूपी है, प्रारब्ध है, जो अवश्य हमें भोगना ही पड़ता है, वह भी मिट सकता है, बशर्ते हम जो है ना उसको साक्षात चेतन मानकर उपासना करें। और कलयुग में भगवान जो साक्षात चैतन्य है, वही चैतन्य भक्तों के उद्धार के लिए पाषाण खंड में प्रविष्ट हो गए। क्योंकि सतयुग में त्रेता में तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव में विश्वास था, पर कलयुग के कारण से हमारी बुद्धि ऐसी जड़ बुद्धि हो गई कि हम उस चैतन्य विशिष्ट जो शरीर है, माता पिता गुरु, उनको तो हम शिव पार्वती समझ नहीं सकते। तो भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए पाषाण खंड में प्रवेश हो जाता हूं। तो उस चैतन्य की महिमा है, यदि हम उसमें श्रद्धा पूर्वक उपासना करें तो निश्चित ही वहां से उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। शेष विचार कल करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

दध्मः अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्या रथस्वनश्च रथे चित्रश्च सेनानी ग्रामन्यौ।

0: अयमुपर्यर्वाग्वासुस्तस्यासेनजिच्चासुषेनश्च सेनानी ग्रामन्यौ
1: उर्वशी च पूर्वचित्तिश्च।

नियुद्धिः सचासे शिवाभिः दिवि मूर्धानन्दधिषे स्वर्षाञ्जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम् अबोध्यग्निः समिधा जनानाम् प्रतिधेनुमीवायति मुशासम् यह्वा इव प्रभयामुज्जिहानाः प्रभानवसिस्रते नाकमच्छा अवोचामकवये मेध्यायवचो वन्दारुवृषभाय वृष्णे गविष्ठिरोणमासास्तोमामग्नौ दिवि इव रुक्ममु रुव्यञ्चामश्रेत् अयमिह प्राथमोधायि धातृभिर्होता।

0: சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் .org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பேட்டி ஜவான் ஹுயி தி தோ உஸ்கி பத்னி நே கஹா அப் தோ பேட்டி ஜவான் ஹோ கயி ஷாதி கர்னா சாஹியே இஸ்கா கோயி லட்கா கோஜ் கே ஷாதி கரா தேனா சாஹியே. உஸ் லட்கி கே பாப் நே கஹா கி மஹாத்மா நே கஹா மித்யா ஹை தோ கியா ஷாதி கரானா ஹை. ஹிசாப் கதம் ஹோ கயி. महात्मा ने सारी समस्या का समाधान कर दिया. बेटी मिथ्या है तो क्या शादी कराना है भाई? तूने नहीं सुना वेदांत में? महात्मा ने कथा में नहीं सुनाया? बोले सुना तो मैंने भी है, तो फिर क्यों सोच रही है? मिथ्या है, मिथ्या का क्या शादी कराना है? निश्चिंत होकर बैठ जा, मिथ्या क्या शादी कराना है? लेव जी दूसरे आ गए. अरे भाई तुम्हारी बेटी जवान हो रही है, शादी कराओ. बोले महात्मा ने कह दिया है कि सब मिथ्या है, नाम और रूप मिथ्या है. नाम इसका शकुंतला, रूप इसकी मोटी पतली काली गोरी है, मिथ्या दोनों मिथ्या है, फिर क्या शादी कराना है? तो एक दिन किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ वो भाग गई. अब घर छोड़कर भाग गई तो सब रोने लग गए है, दोनों बैठ के रोने. भाग गई है तो क्या हो गया? मेरे बेटी तो भाग गई. तो सब लोगों ने कहा कि शादी समय में करा देना था, क्यों नहीं कराया? बोले महात्मा ने कह दिया था मिथ्या है, तो हम भी इस निश्चय में बैठ गए मिथ्या है. अब वो तो भाग गई, सचमुच में भाग गई. हमने सोचा था मिथ्या है, वो तो सचमुच में भाग गई, अब क्या करें? अरे मूर्ख, महात्मा ने बेटी मिथ्या है कहा था, उस बेटी की शादी सत्य है ये तो नहीं कहा था ना? है बेटी मिथ्या है तो बेटी की शादी भी मिथ्या है, और जिससे उसको शादी होना है वो बेटा भी मिथ्या है, लड़का भी मिथ्या है. तो मिथ्या लड़की, मिथ्या लड़का, मिथ्या लड़की लड़के का मिथ्या शादी, मिथ्या करा दो. तो मिथ्या मिथ्या मिथ्या सब कुछ ठीक हो जाएगा कि नहीं, बोलो? है तुम बेटी को मिथ्या मानना और शादी को सत्य मानना, लेकिन ये कहां का नियम है भाई? भोजन को मिथ्या मानना, भूख को सत्य मानना. भोजन मिथ्या है, भूख भी मिथ्या है, तो भूत मिथ्या भोजन के द्वारा मिथ्या भूख की निवृत्ति के लिए मिथ्या भोजन मिथ्या ग्रहण करो, रिजल्ट सब सामने आएगा, ठीक आएगा. तो हम तो यही कहते हैं कि मिथ्या प्लस मिथ्या. तो महात्मा सब कुछ मिथ्या करते हुए करते हैं. हाँ, महात्मा ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारा दिया हुआ दक्षिणा ये मिथ्या करके फेंक के नहीं चलते. क्या करते हैं? तुम्हारा द्वारा दिया गया नोट भी मिथ्या, हमारे द्वारा लेना भी मिथ्या. मिथ्या प्लस मिथ्या हो गया कि नहीं, बोलो? है तुम्हारे द्वारा देना भी मिथ्या, नोट भी मिथ्या, हमारे द्वारा लेना भी मिथ्या, और उसको ले जाकर बैंक में रखना भी मिथ्या, बैंक भी मिथ्या. मिथ्या मिथ्या मिथ्या मिथ्या मिथ्या सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, बोलो? हाँ, मिथ्या है करके सड़क में फेंक दोगे तो तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा? मिथ्या होने पर भी मिथ्या बैंक में रखना पड़ेगा, मिथ्या होने पर भी मिथ्या साइन करना पड़ेगा, मिथ्या साइन से मिथ्या नोट मिलेगा आपको, और वही मिथ्या नोट ले जाकर मिथ्या फ्लैट खरीदो, मिथ्या फ्लैट में मिथ्या बैठ जाओ, सारा जगत मिथ्या, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, बोलो? और घर मिथ्या करके किसी के घर में घुस जाओ, ये घर तो मिथ्या है, घुस जाओ तो फिर लकड़ी डंडा पड़ेगा, फिर उसको भी मिथ्या मानने की हिम्मत करो. और जब डंडा पड़े तो बोले ये कैसे हो गया भाई, मिथ्या घर में डंडा सत्य? डंडा भी मिथ्या. तब फिर जन्म मिथ्या, जीवन मिथ्या, तो मृत्यु मिथ्या, तो रिजल्ट सही आता है, रिजल्ट में गलत नहीं है. आज समझ गए कि नहीं? पुलिस वाले क्या करते हैं? कोई अपराधी को पकड़ना होता है तो स्केच बना देते हैं उसके आकार प्रकार के, और फोटो छाप देते हैं। ये व्यक्ति किसी को कहीं मिले तो सूचना करना, 1,00,000 रुपया पुरस्कार मिलेगा। अब पेपर में जो छापा है फोटो हो, वो कहीं सही व्यक्ति है वो, ना मिथ्या है कि नहीं वो? और कोई वही कटिंग को लेके जाए, ये मिल गया मुझे, ले उसे 1,00,000 रुपया, तो वो देगा नहीं देगा? मिथ्या होने पर भी वह सत्य अपराधी को प्राप्त कराने में हेतु बनेगा कि नहीं? सारा जगत मिथ्या है, जीवन मिथ्या है, जन्म मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या होने पर भी इन मिथ्याओं के बीच में एक सत्य वस्तु छुपा हुआ है, जिसका तुम अनुसंधान करोगे तो फिर वो सत्य वस्तु प्रगट हो जाएगा। और क्योंकि मिथ्या को ही सत्य मान लोगे तो सत्य फिर ढका रह जाएगा। कई बार हमसे यही तो हो रहा है ना, मिथ्या को ही सत्य मान रहे हैं इसलिए सत्य ढक गया, और मिथ्या को बिल्कुल मिथ्या मानेंगे तो सत्य प्रकट होगा। सर्प को ही सत्य मान लेंगे तो रस्सी कभी भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। सर्प को ही सत्य मानते रहोगे तो रस्सी तुम्हें कभी मिलेगा? तुम्हारी हिम्मत होगी ये रस्सी एक करके पकड़ने की? बोलो, सत्य छुप गया, जबकि सत्य उस सर्प से भिन्न नहीं है, रस्सी उस सर्प से भिन्न नहीं है, परंतु मिथ्या सर्प को तुमने सत्य मान लेने के कारण, उस मिथ्या को सत्य मानने के कारण सत्य रस्सी ढक गया, परोक्ष हो गया, और तुमको 3 काल में सत्य रस्सी मिलेगा ही नहीं। रस्सी खोदते जाओ, चलोगे इधर भी रस्सी खोजोगे, उधर भी रस्सी खोजोगे, रस्सी पड़ी हुई सामने, उसको तुम सर्प मान रहे हो और सत्य मान रहे हो, तो सर्प सत्य मानोगे तो हिम्मत होगा उसको उठाने का? सर्प को सत्य मान लिया तो उसके नजदीक जाने का ही हिम्मत नहीं होगा। और परिणाम क्या हुआ? मिथ्या वस्तु को सत्य मानने का परिणाम क्या हुआ? सत्य वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है, रस्सी कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी वहां जाने की, डरते रहोगे। कितनी जन्म में, हर जन्म में तुम यही कर रहे हो। मिथ्या सर्प को तुम सत्य मान रहे हो, परिणाम क्या हुआ कि सत्य रस्सी तुमको कभी भी नहीं मिल रहा है। मिथ्या जगत को तुम सत्य मान रहे हो तो परिणाम क्या हो रहा है कि इसका अधिष्ठान सत्य ब्रह्म कभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है, मिथ्या शरीर को ही सत्य मानते जा रहे हो तो जिस अधिष्ठान में यह मिथ्या शरीर प्रतीत हो रहा है वो सत्य वस्तु हमेशा परोक्ष हो रहा है, अपरोक्ष होता ही नहीं है। शरीर मिथ्या है, मिथ्या ही निश्चय कर दोगे तो तुम फिर ये निश्चय करोगे कि शरीर मिथ्या है तो फिर सत्य क्या है? शरीर मिथ्या है तो इसके प्रति मोह खत्म हो जाएगी। सर्प मिथ्या है ये निश्चय हो जाएगा तो उसके प्रति होने वाला जो डर और भय है वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो जो सर्प है वो मिथ्या है तो तुम हिम्मत करके वहां पहुंच जाओगे, मिथ्या है तो फिर मेरा क्या बिगाड़ेगा, तो हिम्मत करके जाओगे तो मिलेगा क्या तुमको? बोलो, रस्सी प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं? ये जगत को मिथ्या है करके पकड़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ब्रह्म मिलेगा, सत्य मिलेगा। और जगत को सत्य करके मानोगे तो फिर ब्रह्म सत्य नहीं मिलता, दो सत्य हो नहीं सकते बाबा। हमारे सामने यही तो समस्या है, एक तो हम ये मान रहे हैं पूरी जन्म जन्मांतर के संस्कार को लेकर जगत बिल्कुल सत्य है, और साथ साथ ही हम ये भी चाह रहे हैं कि महात्माओं के द्वारा, उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म सत्य है वो भी मुझे मिलना चाहिए, और जो जगत सत्य है वो भी मुझे मिलना चाहिए। और जब होगा नहीं बाबा, दो सत्य तुमको एक साथ कहां मिलेगा? जगत सत्य है तो इसी में संतोष कर लो, पैदा होता है तो पैदा हो, मरता है तो मरो, और क्या? तब तो फिर रोने को भी सत्य मान लो, हंसने को भी सत्य मान लो। महात्मा क्या कहते हैं? हंसने को भी मिथ्या, पैदा होने को भी मिथ्या, हंसने को भी मिथ्या, मरने को भी मिथ्या, तो रोने को भी मिथ्या। ले जी है? सिनेमा का एक्टर क्या करते हैं? मिथ्या प्लस मिथ्या इजकल टू सत्य मिथ्या, पैसा उनको पूरा मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? स्टेज में जो पत्नी होती है मिथ्या पत्नी होती है कि नहीं? हीरोइन, और वो हीरो आता है, वो शादी करता है, क्या सत्य शादी करते हैं कि मिथ्या शादी करते हैं? मिथ्या शादी करते हैं। तो उसका पति भी मिथ्या होता है, उसकी पत्नी भी मिथ्या होती है, होती है कि नहीं बोलो, दोनों मिथ्या होते हैं कि नहीं। और उसके बाद उसकी पत्नी मर जाती है तो कौन मर गया है? मिथ्या पत्नी मर रही है। और वो जो हीरो रोता है मेरी पत्नी मर गई करके, वो क्या सत्य रोता है कि मिथ्या रोता है? बोलो ना मुझे, जवाब दो, मिथ्या रोता है कि नहीं? सत्य रोता है वो? आप लोगों की तरह रोता है वो? है मिथ्या रोता है कि नहीं? है मिथ्या रोता है। अब फिर दूसरी शादी कर लेता है तो वो कौन सी होती है दूसरी भी? स्टेज में सब मिथ्या है ना, सत्य होता है वहां, सब कुछ ठीक हो रहा है। और उसके बाद उसको तनख्वाह मिलता है, तनख्वाह पक्का मिलता है कि नहीं बोलो? ये सब मिथ्या करते करते तनख्वाह उसको जो पैसा है वो तो बिल्कुल सही मिल जाता है, है? लाखों रुपया मिल जाता है, सब कुछ मिथ्या पैसा। उसको ही सत्य मान लिया होता और जिस हीरोइन से उसने स्टेज में शादी की, जिस हीरो से शादी की, दोनों ही घर जाके घर बसा लिए होते तो किसी का प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में, फिल्मी उद्योग में फिल्म चलता, बोलो तो कोई पैसा देता उनको? है? हम तो शादी कर गया, ले जी खत्म हो गई बात। अब असली शादी किया था तो अभी ऐश्वर्या राय और अभिषेक दोनों एक ही स्टेज में रहते हैं, फिर पिक्चर बनाने लगते हैं, फिर दोबारे शादी करते हैं, तो वो दोबारे शादी जो करते हैं स्टेज में, सत्य करते हैं कि मिथ्या करते हैं? असली शादी तो पहले हो चुकी है, अब जो दूसरे शादी हो रही है, कितनी बार शादी करोगे कोई पूछेगा तो क्या कहेगा वो? अरे भाई असली तो एक ही बार है, ये तो फिर मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, सब कुछ ठीक चलता है। तो ये दो दृष्टि हमेशा रखना, एक जगत नाम रूप सब के सब मिथ्या हैं, तो मिथ्या शरीर है, मिथ्या साड़ी है, और मिथ्या पहन लो तो इज्जत बना रहेगा। शरीर मिथ्या है, साड़ी मिथ्या है, तो मिथ्या को मिथ्या साड़ी क्यों लगाना? वह नंगे चलोगे तो फिर है तो नंगा भी मिथ्या है, लेकिन सब पत्थर मारेंगे तो फिर तुम उस कहोगे कि अरे रे रे इसने तो मुझे मार डाला, तो फिर उसको भी मिथ्या मानो, फिर क्यों रहोगे उसमें? तो मिथ्या प्लस मिथ्या सब कुछ ठीक हो जाता है। तो महात्मा का हिसाब ये मिथ्या प्लस मिथ्या सब ठीक होता है, और हमारा हिसाब सत्य प्लस सत्य करने लगते हैं, सत्य प्लस सत्य इक्वल टू इतने दिन वेदांत सुनाया, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। सत्य के साथ सत्य का प्लस होता है, क्या सुन रहे हो वेदांत? सत्य दो होता तब न प्लस होता, सत्य तो एक है, एक सत्य के साथ प्लस की कल्पना तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? हैं? क्वेश्चन ही गलत हो गया, तुम ये क्यों नहीं कर सके? सत्य प्लस सत्य इक्वल टू ये क्यों नहीं कर सके? पहले क्यों नहीं कहा ये बात? सत्य का कोई प्लस होता है? सत्य के साथ सत्य का प्लस नहीं होता, क्योंकि सत्य एक है, एक होने के कारण प्लस नहीं होता। और सत्य के साथ मिथ्या का प्लस नहीं होता, क्योंकि दोनों विरोधाभास है, इसलिए प्लस नहीं होता है। मिथ्या के साथ जितना प्लस करना है कर लो, हजार प्लस कर लो ना, मिथ्या प्लस मिथ्या प्लस मिथ्या प्लस मिथ्या प्लस मिथ्या प्लस, टेंथ प्लस कर लो, ट्वेल्थ प्लस कर लो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? क्योंकि मिथ्या अनेक है इसलिए प्लस होता है, मिथ्या मिथ्या प्लस होता है क्योंकि मिथ्या अनेक है, नाम रूप अनेक है, है कि नहीं? वेदांत तो समझ में आ रही है कि नहीं? नाम रूप अनेक है और नाम रूप मिथ्या है, इसलिए अनेक नाम रूपों में मिथ्या प्लस आराम से हो सकता है, लेकिन सत्य का प्लस क्यों नहीं होता है? क्योंकि सत्य एक है, एक होने के कारण प्लस नहीं होता, और सत्य और मिथ्या का प्लस नहीं होता, क्योंकि सत्य और मिथ्या दोनों विरोधाभासी हैं, इसलिए प्लस नहीं होगा। तो प्लस होगा तो मिथ्या मिथ्या का ही होगा, तो जगत जगत का ही प्लस हो सकता है, जगत और ब्रह्म का प्लस नहीं हो सकता, ब्रह्म ब्रह्म का प्लस नहीं हो सकता है, बात समझ गए? और जगत का प्लस तो मिथ्या प्लस, चाहे हजार प्लस कर लो ना तो हम कोशिश क्या करते हैं, मिथ्या के साथ सत्य को प्लस करने लग जाते हैं। शरीर मिथ्या, आत्मा सत्य, दोनों को प्लस करके मैं ठीक हूं, रिजल्ट गलत आ जाता है, क्योंकि होता ही नहीं। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो ये क्या हो गया भाई, ये प्लस का रिजल्ट कहां गया? शरीर तो नष्ट होना है, तो तुम्हारी गणित ही गलत है, तो कहां से रिजल्ट सही आएगा? महात्माओं का गणित सही है, इसीलिए शरीर नष्ट होता है, वो नहीं दो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथ्या प्लस मिथ्या इजकल टू मिथ्या, महामंडलेश्वर मिथ्या, हेलो जी, मिथ्या महात्मा, मिथ्या शरीर, मिथ्या शरीर, मिथ्या चादर, मिथ्या चादर, मिथ्या उड़ाया, महामंडलेश्वर मिथ्या, लेव जी, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां। सब जगह फर्क पड़ेगा, यहां कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, चादर उड़ाओ चाहे ना उड़ाओ, मंडलेश्वर बनाओ चाहे कमंडलेश्वर बनाओ, यहां कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। मिथ्या प्लस मिथ्या, आराम से जगत व्यवहार चलता है। तो यहां बता रहे थे आठवें श्लोक में, स्वप्ने जागृति वा ययेश पुरुषो माया परिभ्रामित तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। ये सब माया ने भ्रमित कर रखा है। तब ये जिज्ञासा हुई स्वतः कि ये माया का भ्रम से हम कैसे निकलेंगे। आठवें श्लोक में माया के भ्रम में पड़ा हुआ है ये जो कहा गया, तो माया के भ्रम से हम कैसे निकलें बाहर। तो माया के भ्रम से निकलने के दो उपाय हैं। एक सबसे बढ़िया और उत्तम उपाय है ज्ञान साधना, ब्रह्म विचार, अध्यात्म विचार, ब्रह्म तत्व का, सत्य तत्व का अनुसंधान। जब तुम सत्य तत्व का, परम शिव का यथार्थ स्वरूप का अनुसंधान करने लग जाओगे, तब ये माया से तुम निकल जाओगे। और यदि ब्रह्म विचार नहीं कर सकते हो, परमात्मा के तत्व यथार्थ तत्व का विचार नहीं कर सकते हो, तो फिर दूसरा उपाय है, जिस परमात्मा की ये माया है उसी की उपासना करो, उसी से प्रार्थना करो कि महाराज मैं आपकी इस माया को हटा नहीं पा रहा हूं, आप ही अपनी माया को हटा दो। ये दो उपाय हैं। परमात्मा की कृपा हो जावे तो माया हट सकती है, और व्यक्ति खुद विचार करने लग जावे तो माया हट सकती है। खुद विचार करने लग जाएगा तो भी माया टिकेगी नहीं, लेकिन विचार किए बिना तुम अन्य साधनों से माया को हटाने लग जाओगे तो माया नहीं हटेगी। तो माया दो साधनों से हटती है, एक तो परमात्मा हटा में तो वो हट जाती है, और या फिर आप विचार करो तो विचार के सामने माया नहीं टिकती। तो क्या करें? तो फिर बोले उपासना करो उस परमात्मा की, जिसकी ये माया आपको फंसा रही है, घुमा रही है, भ्रमित कर रही है, उसी की उपासना करो। किस रूप में उपासना करें? तो यूं तो शैव सिद्धांत में विचार के लिए 36 तत्व स्वीकार किया है शैव दर्शन में। जगत इस 36 तत्वों का सम्मेलन है, यानी संघात है ये जगत। मूल रूप में ये 36 तत्व मानते हैं शैव दर्शन। शिव पुराण में भी है और शैव काश्मीरी दर्शन में भी इसकी चर्चा है। जैसे सांख्यों ने 25 तत्व माना, शैवों ने 36 तत्व माना, नैयायिकों ने सप्त पदार्थ माना, चार्वाकियों ने एक ही वस्तु माना। प्रत्यक्ष जो दिखता है वही एक है, और मूल तत्व चार हैं, ये चार्वाकियों का है। पृथ्वी जल वायु, पृथ्वी तेज जल वायु, ये चार तत्व हैं। इसी का सारा खेल जगत है। आकाश वो मानते नहीं, क्योंकि आकाश अमूर्त है, सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, इसलिए आकाश को तत्व नहीं मानते। बाकी यही चार पदार्थों का ही सारा जगत है, जीव भी, जगत भी, भोग्य भी, भोक्ता भी, कर्म भी, क्रिया भी, सब इसी के अंतर्गत आता है। उन सब में से शैव दर्शन में प्रत्यक्ष दिखते हुए भगवान के ये आठ मूर्ति हैं, उन आठ मूर्तियों के बारे में ही तुम भगवान शिव के रूप में ही उपासना करोगे तो उस उपासना के फलीभूत होकर माया भगवान शिव की कृपा से, अष्टमूर्ति भगवान शिव की कृपा से माया छोड़ देगी, हट जाएगी, माया का पर्दा हट जाएगा, तो भगवान शिव अपरोक्ष हो जाएंगे। यानी आत्मा अपरोक्ष है, शिव का अर्थ कोई दूसरा नहीं समझ लेना आप वेदांत में, हाँ यथार्थ सत्य वस्तु प्रकट हो जाएगा। तो भगवान शिव के ये अष्टमूर्ति बड़ा प्रसिद्ध है, तो यह अष्टमूर्ति का स्मरण किया, यह उपासना के लिए। हालांकि शिव एक ही है, एक ही होने पर भी भावना से प्रतीको उपासना है, ये प्रतीको उपासना के लिए ये सब बात कही गई है।

भूमि भू, ये जो पृथ्वी है ये भगवान शिव का ही स्वरूप है, शिव ही है ये। क्योंकि भूगोल साइंस भी क्या कहता है पृथ्वी को, गोल मानता है कि नहीं, और भगवान शिवलिंग कैसा होता है, गोल मटोल, ये पृथ्वी पूरा का पूरा शिवलिंग है। तुम्हारे मंदिर में रखा हुआ छोटा है, ये बहुत बड़ा है। और शिवलिंग के ऊपर कभी कभी चींटी चढ़ती है, देखा है कि नहीं, हा? देखा है कि नहीं। और आप और हम उस शिवलिंग के ऊपर ही भगवान शिव के प्रसाद खाने के लिए घूम रहे हैं, हा? क्योंकि पूरा पृथ्वी शिवलिंग है, तो इसके ऊपर विचरण करने वाले हम जीव समूह क्या है, वही शिव प्रसाद खाने के लिए। क्योंकि पृथ्वी से ही निकलता हुआ गांव है, पृथ्वी से निकल रहा है कैरी, वो सब क्या है, शिव प्रसाद है कि नहीं। इसको ठीक से भोगोगे तो तुम्हारे प्रसाद हो जाएगा, और यदि ठीक से इस बुद्धि से नहीं भोगोगे तो वह फिर भोग होगा, और वह भोग तुम्हारे लिए रोग होगा, और वह रोग वियोग का कारण बनकर फिर शोक में परिणत हो जाएगा। कब? पृथ्वी को पूरा का पूरा शिव, और पृथ्वी से प्राप्त होने वाले पदार्थों को शिव प्रसाद मानोगे, तो शिव प्रसाद को तो कोई दुरुपयोग करता नहीं, करता है, दुरुपयोग नहीं करेगा तो सदुपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा तो प्रसाद होगा, भोग नहीं होगा, भोग और विलास नहीं होगा, भोग विलास नहीं होगा तो क्या होगा, रोग नहीं होगा, रोग नहीं होगा तो वियोग नहीं होगा, वियोग नहीं होगा तो शोक नहीं होगा। ये देख लो, तो सारा पृथ्वी शिव है, इसी के रूप में उपासना करो, तो ये उपासना परिपक्व हो तो भगवान शिव अपनी माया को हटा देते हैं इस बुद्धि से। अम्भांसी दूसरा है जल, ये जल ही पृथ्वी माने शिव है, शिव का रूप है जल। भूरम्भांस अनल अग्नि, अग्नि भी भगवान शिव का स्वरूप है। अनिल वायु, अंबर आकाश, हिमांशु अहरनाथ, अहरनाथ माने सूर्य दिन का स्वामी, अहरनाथ हिमांशु चंद्रमा, पुमान जीवात्मा, इत्यादि ये आठ शिव जी के मूर्ति हैं, अष्ट मूर्ति हैं। कालिदास जी ने शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतल में पहले मंगलाचरण में ही अष्ट मूर्ति का स्मरण किया है, और वेद ने इन्हीं अष्ट मूर्तियों को इस तरह माना है, ओम सर्वाय चितिमूर्तये नमः, सर्वाय सर्वरूप, सर्वाय चितिमूर्त भव सर्वो रुद्र पतुपति महान, ये पुष्पदंताचार्य जी ने भी शिव महिमन स्त्रोत्र में ये अष्टमूर्ति का ही स्मरण किया है। कालिदास ने भी अष्टमूर्ति का स्मरण किया उपासना के लिए, और यहां शंकराचार्य जी ने दक्षिणामूर्ति में भी उसी भगवान शिव के अष्टमूर्ति का स्मरण किया है। ओम सर्वाय चितिमूर्तये नमः, ओम भवाय जलमूर्तये नमः, ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः, ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः, ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः, ओम पशु

सूर्य को भगवान शिव ईशान के रूप में है, भगवान शिव का है ना, बाबा सर्वो रुद्र पशुपति रथो मां रामहन। हाँ शिव तमरकस्तम सोमस तमसी पवनस्तम हुतवहा तमापस्तम व्योमा तम धरणिरात्मा तमिति च परिच्छिन्नामेवम त्वयि परिणता विभ्रतुगिरम नबीद मस्त तत्त्वम वयम यतु यत्त्वम नभवसि। हे शिवा, मैं जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जान सकता, नहीं पा सकता जिसमें आप विद्यमान न हो, जो आप नहीं हो। ये माला क्या है? यही तो आप हैं। क्यों मैं हूं शिव? कैसे ये माला? क्योंकि पृथ्वी शिव रूप है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, यही तो शिव है। ये नबीद मस्त तत्त्व, मैं तो इस जगत में तुम्हारे अलावा दूसरे किसी पदार्थों को जानता ही नहीं हूं। कंदवराज पुष्प दंताचार्य जी शिव महिमा स्तोत्र में कहते हैं, और वही बात यहां कह रहे हैं। इत्याभाति चराल चरात्मकम इदम यस्यैव मूर्ति अष्टकम, चर और अचर, व्यक्त और अव्यक्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष, स्थूल और सूक्ष्म, जो कुछ भी जगत है वो सब यही भगवान शिव के आठ मूर्तियों का संघात रूप है, मिला जुला स्वरूप है। नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम, और जब विचार करने लगते हो तो परमात्मा के अलावा जगत में कोई सिद्ध ही नहीं होता है। क्या सिद्ध होगा भाई? नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम, विचारकों के लिए शिव की सत्ता के अलावा और कुछ नहीं है।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Senyaniyar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankar Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi jis Dakshin Bharatiya Shiv Bhakt ya Sant ki kahani sunenge, inka naam Ishay Gyaniyar hai. भगवान के अनुग्रह से नंबियारो के नाम से भूलोक में सुंदर का जन्म हुआ। तपस्वी जन उनकी कीर्ति गाते हुए अगाते नहीं हैं। जब बालक नंबियारो गली में कीड़ा का रथ खींचकर खेलते, किलकारी मारते तथा डगमग डगमग चलते तो उनका सौंदर्य देखते ही बनता था। पैरों में मंजीरा, कमर में मेखला शोभायन तथा बाल्य सुलभ मुस्कान और उल्लास से वे विविध क्रीड़ाएं करते थे। इस बालक की माता का नाम ईशय ज्ञानियार था। एक बार राजा नरसिंह मुनियार ने नंबियारों को क्रीड़ाएं करते हुए देखा तो इनके अलौकिक रूप सौंदर्य और गुणों का अनुमान लगाकर वे बालक के माता पिता से मिले। उन्होंने बालक को अपने पुत्र मानकर पालन पोषण करने की उनसे अनुमति ले ली। कोई भी माता अपने गुण संपन्न पुत्र को सहज ढंग से किसी को देने को तैयार नहीं होगी और नंबियारो की माँ ने बालक के राजभवन में पालन पोषण की स्वीकृति देकर अद्भुत त्याग किया है। इस पुण्यवती माँ का नाम ईशय ज्ञानियार था। ईशय का अर्थ है संगीत। माना जाता है कि संगीत में विशिष्ट योग्यता से संपन्न होने के कारण इनका यह नाम प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं के प्रभाव से सुंदर भी गायन विद्या में पारंगत हुए। अत्यंत कीर्तियुक्त चढ़ैनाथ की यह सहधर्मिणी ज्ञानी देवी ईशय ज्ञानियार की कीर्ति का गान करने में चक्रवर्ती भी स्वयं को असमर्थ मानते हैं। ये सुंदरमती नायनार की माँ के रूप में ईशय ज्ञानियार हैं और इन्हें भी 63 संतों में एक गिना जाता है। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
3: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: फूल भर के गिलास चाहिए और जब रस खानी होगी तो तुम्हें पूरा कटोरी भर के चाहिए। और तुम ईमानदारी से बोलो, भगवान को थाली धराने का कटोरी कितना बड़ा रखा है? ईमानदारी से बोलो मुझे, जितने बड़े कटोरी में तुम रस खाते हो क्या उतना ही बड़ा कटोरी है भगवान को थाली धराने के लिए? तो इतनी से कटोरी में एक चम्मच रस डालकर, एक तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाते हो, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा। जमवा आओ सुनती रबर श्यामला। वाह, क्या मस्ती से गा देते हो तुम, थाल धराते हो। गुजराती लोग करते हैं? नहीं नहीं, क्या प्रार्थना करते हैं, क्या उससे उनका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। लेकिन तुम लोग कम होशियार नहीं हो। महाराज, भगवान तो एक है कि अनेक है? बोलो, भगवान तो एक है? सारी दुनिया का भगवान तो एक ही है ना। अब विचार करो, बंबई में कितने करोड़ की आबादी है? 100 करोड़ मान लो। 100 करोड़ तो इंडिया की है, 125 करोड़।

0: सवा करोड़ बंबई की आबादी है, मान लो सवा करोड़ में से भी आधे भगवान को भोग लगाने वाले होंगे ना, होंगे कि नहीं है? नहीं होंगे, आधे भी नहीं होंगे, थाली धराने वाले है। चलो 1/3 तो होगा ना, है क्या 25 भी नहीं होगा, 25 करोड़ भी नहीं होंगे भगवान को थाली धराने वाले, नहीं होंगे। चलो 1 करोड़ तो होंगे ना, है जरूर 1 करोड़ तो बंबई में होंगे। मराठी भी भोग चारा धराते हैं भगवान के सामने, गुजराती मारवाड़ी सभी धराते हैं भाई। मान लो एक एक चम्मच 1.25 करोड़, क्या होगा? बड़ा भारी बाल्टी भर जाएगा, एक बाल्टी क्या कितना बढ़ जाएगा, कितना खाएगा वो एक भगवान? सभी लोग थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा देंगे, हैं? हजारों फूल में से मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा अपने चोंच में से लाती है, तो एक छत्ते में रखते रखते कितना होता है, 2-4 किलो हो जाता है, हैं? तुम कह सकते हो। इसलिए भगवान को तो सभी लोग खिलाते हैं, इसलिए उनका पेट भर जाएगा, ऐसी बात नहीं। तब क्यों अर्पण करना पड़ता है? तो भागवत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभपूर्णः। परमात्मा तो निज लाभपूर्ण, अपने स्वरूप आनंद से आनंदित है, वह भक्तों के द्वारा अर्पित क्षुद्र और भौतिक पदार्थ की अपेक्षा वो नहीं रखेगा, फिर क्यों अर्पण करते हो? तो बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, ये प्रहलाद की स्तुति का श्लोक है ये। वह क्योंकि इसीलिए हम परमात्मा को अर्पण करते हैं, नियम क्या है? बिंब को अर्पण किया हुआ प्रतिबिंब को स्वतः मिलता है, बिंब को अर्पण किया हुआ चीज बिंब को तो मिले चाहे न मिले, प्रतिबिंब को तो जरूर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? ये भागवत का श्लोक है, क्योंकि परमात्मा बिंब है और जीवात्मा उसके प्रतिबिंब है। चिदाभास परमात्मा चित स्वरूप है, तो जीवात्मा चिदाभास स्वरूप है, इसलिए परमात्मा का प्रतिबिंब जीवात्मा है। और यदि कोई जीवात्मा बिंब को अर्पण करता है, प्रतिबिंब को स्वतः मिल जाता है। आप लोगों ने देखा हो, आप यदि किसी आईने के सामने, दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े हो, तो मिरर की ललाट में तिलक नहीं होता, तिलक नहीं है मान लो। और आप यदि चाहो कि इतनी सुंदर है, एक तिलक ललाट में नहीं है, हाँ, यदि उसमें एक तिलक लगा दूं तो कितना सुंदर होगा। या इसने साड़ी तो खूब मैचिंग किया, लेकिन कान में झुमके इसने नहीं लगाया, इसके कान में 2 झुमके भी बढ़िया लगा दूं, तो क्या प्रतिबिंब के कान में झुमका लगा पाओगे, हैं? या प्रतिबिंब के ललाट में तिलक लगा पाओगे? प्रतिबिंब को श्रृंगार करना होगा तो किसका श्रृंगार करोगे? प्रतिबिंब का। और यदि तुमने बिंब का श्रृंगार कर दी, प्रतिबिंब सुंदर स्वतः सुंदर होगा कि नहीं, हैं? बिंब का श्रृंगार कर लिया तो प्रतिबिंब स्वतः ही सुंदर हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा को अर्पण करने का मतलब यह है कि परमात्मा को अर्पण करने के बाद परमात्मा को जो प्राप्त होगा, परमात्मा की को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वह स्वतः ही जीवात्मा को अपने आप प्राप्त होगा, तभी तुम परमात्मा को अर्पण करते हो। यह भागवत का सिद्धांत है, तुम्हें करना जरूरी है, हाँ, क्योंकि तुम्हें उसका फल प्राप्त होना है। देखो हमारे श्रद्धेय गुरु महाराज थे, तो प्रश्न हुआ, महाराज जी का शरीर 85 में, इतनी 85 वर्ष की उम्र में शरीर, पंचभूतक शरीर नष्ट हुआ, और वो निमित्त बन गया जबड़े का कैंसर, निमित्त बन गया वो, कोई भी निमित्त बन सकता है शरीर जाने के लिए, बहाना खोजता है वो शरीर। हाँ, जब जाना होगा इसको तो ये हजार बहाना खोजेगा, उसके एक बहाने को बंद करो दूसरा बहाना खोजेगा, दूसरा बंद करो तीसरा बहाना खोजेगा, और उसी को निमित्त बनाकर जाएगा वो, तो बना के जाए। तो महाराज जी का अंतम स्थिति थी शरीर का, फिर भी सुबह 9 बजे महाराज जी ने प्रवचन किया और 10:30 बजे शरीर खत्म हो गया। बिस्तर में लेटे लेटे भक्त लोग गए दर्शन करने, प्रश्न किया, महाराज जी के परम शिष्य थे, माता जी थी, उनने प्रश्न किया, महाराज आप जैसे इतने महान संतों को इस तरह का कष्ट क्यों होता है, इससे अच्छा तो महाराज ये आजकल की जो बीमारी है वो सबसे अच्छी है। कौन सी बीमारी? तुम लोग समझते तो बहुत हो, वो सबसे अच्छी है। अटैक आया फट गया, किसी कई बिस्तर में नहीं पड़ना, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं, तुरंत एक झटका लगा गया, बस आ किया हा हो गया, वो सबसे अच्छी है। लंबे बीमार होकर पड़े रहे, सभी लोग हैरान हों परेशान हों, तो महाराज जी ने संक्षिप्त जवाब दिया है, तुम गलत कह रहे हो। लंबे बीमार यदि होते हैं कोई, उसका फल उनकी सेवा करने वालों को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। क्या होता है बोलो? ये दृष्टि आज के युवाओं को समझना जरूरी है। उनकी कहां दृष्टि है? वो माता पिताओं के प्रति ये दृष्टि होना बहुत जरूरी है। ये भाव है नहीं आज के जनरेशन में। महाराज जी ने जवाब दिया, मान लो कि कोई मां कोई बाप लंबे बीमारी पड़ा हुआ बीमार, और उसका बेटा या बहू उसकी सेवा कर रही है, कर रहे हैं, उनको सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, बाप के मरने के बाद, मां के मरने के बाद उसके नाम के धन और संपत्ति जो है वो तो प्राप्त होगा ही होगा, किसको? सेवा करने वाले को। साथ में लंबे समय तक सेवा करने का पुण्य भी प्राप्त होगा। लेकिन जो ऑन द स्पॉट जो हार्ट अटैक से मर गए, वो बड़े अन्याय कर रहे हैं। किसके प्रति? किसके प्रति? अपने बहू बेटों के प्रति। भौतिक संपत्ति तो वो छोड़कर जा रहे हैं, देके जा रहे हैं, लेकिन उनको पुण्य का अवसर नहीं दिया उन्होंने, ये बड़ा अन्याय है। ये दृष्टि रखनी चाहिए वृद्धों की सेवा करते समय, माता पिता की सेवा करते समय, गुरु की सेवा करते समय, फायदा किसको है? हाँ? मेरी मां तत्काल नहीं मरी, मुझे सेवा करना पड़ रहा है, उसका धन जो होगा वो तो मुझे मिलेगा, साथ मुझे जो पुण्य मिलेगा, धन ये लोक के लिए होगा, पुण्य परलोक के लिए हो जाएगा, बड़ी कृपा कर रही है। ये भाव जब तक नहीं बनेगा तब तक सेवा में प्रवृत्ति रुचि नहीं बढ़ेगी। महाराज जी ने कहा वो अन्याय कर रहे हैं जो तुरंत मरते हैं। मैं समझ गया, आ गया कि नहीं? आप लोगों को अन्याय करते हैं। उन्होंने अपने बहु बेटों को, अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को सेवा करने का अवसर नहीं दिया, और सेवा करने का अवसर प्रदान न करना, बोलो अन्याय है कि नहीं? पुण्य से वंचित हो गए कि नहीं बोलो? हैं? अब माता पिता गुरु आदि जो बीमार हो रहे हैं उनको अपेक्षा है कि नहीं मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मेरी बहू मेरी सेवा करे, उनको जरूरत है कि नहीं, अपेक्षा है कि नहीं, इस पर मत जाओ। लेकिन बहु बेटों को यह अपेक्षा है कि नहीं कि मुझे पुण्य मिले, तो सेवा करनी चाहिए। किसकी? अपने पुण्य के अवसर प्राप्त हो रहा है, ये तो गौरव की बात है भाई। धन तो मिल रहा है, मिल रहा है, पुण्य भी मिल रहा है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि महाराज क्षुद्र फल देने वाले तो बहुत हैं संसार में, हाँ, लेकिन उन क्षुद्र फल देने वालों की मैं न सेवा करूंगा, न उनकी स्तुति करूंगा, न भजन करूंगा, न गुणगान करूंगा, न उनके आश्रय में मैं जाऊंगा। मैं तो आपके ही सेवा की अपेक्षा रखता हूं। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदा न मन्ने स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृत फलम। हाँ, श्री सूक्त का पाठ करो तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी, तो तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। होगी कि नहीं? लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो लक्ष्मी देगी वो, हाँ? कुबेर की स्तुति करो, इंद्र के लिए यज्ञ करो, इंद्र प्रसन्न होगा तो सब कुछ दे सकता है। लेकिन हे शिवा, हमको ये पता है आपके महिमा के सामने इंद्र तो क्षुद्र है, कुछ भी नहीं है इंद्र, हाँ? वो भी आपकी सेवा करता रहता, आपके सेवा के लिए वो भी तड़पता रहता है, उसके क्या महानता है भाई? सारी दुनिया के जो बड़े से बड़े हैं देवता, विबुधा देवता, वे सब बहुत हैं, जरा सा प्रशंसा कर दो, उनकी स्तुति गान कर दो, प्रसन्न होकर बहुत देने वाले हैं वो। अरे भूत प्रेत भी देते हैं वो, हाँ? यूं तो खाली देवता नहीं, भूत प्रेत भी देते हैं, वो खुश हो जाए तो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ क्या होगा? क्षुद्र ही तो होंगे वो, क्षुद्र फलदा। आप लोगों ने शिव पुराण सुनी होगी। शिव पुराण में भगवान शिव का एक परम भक्त का नाम आता है, उपमन्यु। शिव पुराण में उपमन्यु की शिव भक्ति का इतना सुंदर वर्णन है। उपमन्यु बालक है। अब आप लोग अन्यथा नहीं लेना, कोई वैष्णव हो तो नाराज हो जाओगे, नाराज नहीं होना। उस शिव पुराण को प्रमाण नहीं मानते हैं, भागवत को प्रमाण मानते हैं, समझे कि नहीं? जबकि शिव पुराण वेदव्यास जी की, भागवत भी वेदव्यास जी की, कहते तो है ना, लेकिन श्रीमद् भागवत ने जो कहा वो उसको तो प्रमाण मानेंगे, अन्य पुराणों ने जो कहा उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। लेकिन शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, भगवान कृष्ण के शिव मंत्र के दीक्षा गुरु उपमन्यु है। भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से शिव मंत्र पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली है, सीधा शिव पुराण में लिखा है, पढ़ लो। उपमन्यु इतने महान शिव भक्त थे, लेकिन जब हम ये कहते हैं तो वो लोग नहीं मानते। भागवत में लिखा हो तो बोलो, शिव पुराण की बात हम नहीं मानेंगे। भगवान कहीं उपमन्यु से दीक्षा लेगा? अरे भाई, ये तो ईश्वर की लीला है, वो क्या क्या नहीं लेगा। गोपिनियों से जब मक्खन लेता है तो उपमन्यु से दीक्षा लेने में क्या अर्ज है? बोलो, गोपिनियों से छाछ लेता है, गोपियों से छाछ लिया कि नहीं? वो भी नाच नाच कर लिया है, खूब नाच दिखाया, तब एक गिलास छाछ दी, चले गए, आहा क्या आनंद आ गया है। लियो जी, साहित्यकारों ने यह चर्चा किया है कि नहीं, बोलो, है? भगवान श्री कृष्ण की लीला में, है? चोरी चोरी करके खाना पड़ रहा है, है? चोरी कर करके खाना पड़ रहा है कि नहीं? मक्खन तुम लोग जो भोग लगाते इतना देते हो, उससे पेट भरता नहीं है, तो फिर चोरी करके खाते हैं। भोग लगाते समय इतना थाल भर भर के लगा देते तो उनको चोरी करना ना पड़ता, और तुम थोड़ा थोड़ा लगा देते पेट भरता नहीं, तो फिर चोरी करते हो, और क्या करेंगे। उपमन्यु की कथा आती है शिव पुराण में। भगवान शिव के परम भक्त थे, तपस्या, शिव जी के साक्षात्कार के लिए उन्होंने बड़ा भारी तपस्या की। बालक थे 5 साल के, उपमन्यु का उम्र 5 वर्ष का था, जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव और जैसे उपमन्यु, जैसे नचिकेता, हाँ। देखो, बूढ़े होने पर बिगड़ जाते हो, हाँ, हमारे हिंदी भाषा में तो ये कहते हैं कि साठी हुआ कि सठी आ गया, बूढ़े होने पर और बिगड़ जाते हैं। बेचारे बालक को जो भक्ति लग जाएगी, बूढ़ों को इतनी जल्दी भक्ति नहीं लगती है। सारे प्रमाण तो यही है ना, शास्त्र में भरे पड़े हैं। बच्चों के भगवत भक्ति का उदाहरण तो कई है पुराणों में। भगवान शिव के अनन्य भक्ति करते थे उपमन्यु, तो उनके खाना पीना सब छोड़ दिया, तो उनके तपस्या के चलते पृथ्वी में डगमगाने लग गया। कैलाश में बैठे थे भगवान शिव, तो वो ऐसा लगा कि भूचाल आ रहा है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तो उपमन्यु तपस्या कर रहा, खाना पीना छोड़ दिया, प्राण को रोध कर दिया, निरोध कर दिया, व्यष्टि वायु समष्टि में जाकर धारणा कर दी, और धारणा समष्टि वायु को ही उन्होंने रुद्ध कर दिया, तो बस हाहाकार। किस लिए? बोले आपके दर्शन की अभिलाषा से उपमन्यु तपस्या कर रहा है। बोले वो मेरी अभिलाषा रखता है कि कोई और वस्तु रचाता है, है? जाके परीक्षा करते हैं। पुराण में उल्लेख आया है कि भगवान शिव इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ के जहां उपमन्यु तपस्या कर रहे थे वहां पहुंच गए, और उसको संबोधन किया, ए बेटा तुम इतना कठोर तपस्या कर रहे हो किस लिए? उपमन्यु ने कहा मैं शिव के साक्षात दर्शन करने के लिए तपस्या कर रहा हूं। तो इंद्र ने कहा, यानी शिव ने कहा, इंद्र का रूप धारण करके आया था, उन्होंने कहा बेटा इंद्र की तपस्या क्यों, माने शिव की तपस्या क्यों करते हो? क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। अमंगल्यम शीलम, मैमनी स्तोत्र में आया ना, श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सचरा चिता भस्मा लेपो सर्गव निर्कोटी परिकर अमंगल्यम शीलम। मैं स्वर्ग का साक्षात राजा हूं इंद्र, देख ले ऐरावत हाथी, देख ले भाई जयंती माला, ये देख मैं स्वर्ग का राजा, तुझे जो चाहिए मैं तुमको दे दूंगा, तेरे सारे मनोरथ पूरा कर सकता हूं मैं। उस फक्कड़ जोगी की क्या तू भक्ति करता है, छोड़ दे उसकी भक्ति, कुछ भी नहीं है उसके पास, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कुल, न गोत्र, तू तो ब्राह्मण है ना बेटा? बोले हां मैं तो ब्राह्मण हूं, और शिव तो कुल गोत्र का मालूम ही नहीं है, खानदान क्या है, है? किस गोत्र के हैं शिव जी, किस कुल के हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है वो? और लगता है उनके आचरणों से तो वो तो परम शूद्र हैं, लेकिन पुष्पदंताचार्य जी ने एक बात कह दी है, कोई भक्त भगवान का आचरण अमंगलमय है इतने रूप में स्मरण करता है तो भी उसका मंगल हो जाता है। देख लो भगवान शिव का आचरण शूद्र जैसा है, इतने यदि आचरण स्मरण करता है तो भी उसका परम मंगल हो जाता है। स्मर्त्री नाम परम मंगलमसि। हाँ, तो बड़ी निंदा कर दी भगवान शिव की। उपमन्यु ने कहा कि देख इंद्र तू यहां से चले जा, तो मेरे आराध्य देव की तू निंदा नहीं करना, और ज्यादा निंदा करता है तो मैं तुझे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो छोटा बालक हूं, तो शक्तिशाली है, समर्थ है, तुझे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शिव की तू यदि निंदा करता है, योग अग्नि से मैं अपने शरीर को ही जला के खत्म कर दूंगा। बोल तो क्या चाहता है? तेरे सामने मैं अपने शरीर को योग अग्नि से जलाकर खत्म कर दूं, और या तेरी शिव निंदा को चुपचाप सुनता रहूं? वो हमसे नहीं होने वाला है। तो जाता है कि मैं शरीर को नष्ट कर दूं? बोल, मुझे शिव के अलावा और किसी से कुछ लेना नहीं है, तू क्या देगा? बोल तेरे पास क्या है? तेरे पास जो है वो शिव भक्ति और भगवान शिव के अनन्य भक्ति के सामने क्षुद्र है, बस क्षुद्र फलदा सहस्रम वर्तन्ते विबुधा जगति विबुधा क्षुद्र फलदा नमन्ने स्वप्ने वा। तो जब उसने उपमन्यु ने इंद्र के सामने इस प्रकार की बात कही तो भगवान शिव को लगा कि यह तो अनन्य है, मेरे अलावा दूसरे के किसी की कामना नहीं। अनन्य शब्द का अर्थ वैष्णव लोग दूसरी बात करते हैं, अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, लेकिन अनन्य शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने दूसरे ढंग से किए। हां, अनन्य माने अद्वैत, वैष्णव लोग अद्वैत नहीं करते, अपने से भिन्न का अस्तित्व न होना वही अनन्य है। वैष्णव कहते हैं विष्णु के अलावा और किसी का भजन न करना वो अनन्य है। और हम वेदांती आदिगुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? न अन्य, अपने अलावा दूसरे का अस्तित्व ही नहीं, यानी ब्रह्म के अलावा परमात्मा के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं। जीव भी केवल प्रातिभाषिक मात्र है, पारमार्थिक तो ब्रह्म ही है। पारमार्थिक में ब्रह्म के अलावा और किसी के सत्ता न होना, इसको क्या कहते हैं? अनन्य, न अन्य, ये अनन्य। दूसरा तो है ही नहीं, तो द्वैत कहां से आएगा भाई? अनन्य का अर्थ तो द्वैत का अभाव, ये एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ये देख लो मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद में एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, वहां दूसरा कहां से आएगा और अन्य होगा? अन्य भक्ति कहां से होगी? अनन्य, ऐसा अर्थ किया है वो शंकराचार्य जी ने। तो उपमन्यु ने देखा कि ये मेरे अलावा और किसी को भजता नहीं है, नहीं तो जीवन ही खत्म करने को तैयार हो गया, देख लो। तो तुरंत भगवान शिव ने उनका जो ऐरावत हाथी था इंद्र का, वो तो उपमन्यु के देखते देखते वृषभ हो गया। क्या हो गया? वृषभ का रूप धारण कर लिया। और जो इंद्र का रूप सामने खड़ा था, देखते देखते साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। बेटा हम तुमसे प्रसन्न है, तुमको क्या चाहिए बोलो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? तो उपमन्यु ने कहा कि मेरी और कोई अभिलाषा नहीं, आपके चरण की सेवा बायक और मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। क्योंकि एक नीति है, नीतिकारों ने कहा सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्न, हाथी का पांव जहां पड़ा हुआ हो उसके अंदर सभी जीव जंतुओं का पांव आ जाएगा। आएगा कि नहीं? भगवान के चरण के अंदर तो सब कुछ आ गया, चरण पकड़ लिया तो सब हो गया। देखो पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, सारा तीनों लोग चतुर्भुवन का सब कुछ भगवान शिव के एक चरण में है, और हमको तो दो चरणों की सेवा करने को मिल रहा है, अब क्या चाहिए बोलो? है कामधेनु गाय यदि जिसके घर में बंधी हो उसको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं बोलो? है कामधेनु गाय जिसके घर में बंधी हो, आपने सुना है कि नहीं? वशिष्ठ के आश्रम में क्या था? कामधेनु गाय नंदी थी, नंदिनी, नंदी, नंदिनी, क्या एक ही चीज है? नंदिनी थी। तुम लोग जो है नंदी शब्द का अर्थ सांड समझ रहे होंगे, इसलिए मेल फीमेल कहो ना, और क्या, नंदिनी थी। चलो कामधेनु गाय हमने कहा था, कामधेनु गाय थी, और उसी से वशिष्ठ जी सब कुछ योगक्षेम किया करते थे। इतना बड़ा गुरुकुल था, उनको प्रेमपुरी आश्रम में आकर डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं थी। थी बोलो सिमन भाई, वशिष्ठ जी आए प्रेमपुरी आश्रम में डोनेशन मांगने? आत्मानंद तो आया होगा, आश्रम चलाना है ना आत्मानंद को, है आत्मानंद को आश्रम चलाना है, गुरुकुल चलाना है, वृद्धाश्रम चलाना है, वो तो डोनेशन मांगने आया होगा। लेकिन वशिष्ठ जी आए, क्यों आएंगे भाई, कामधेनु गाय है, वो तो क्या है, उनको जो संकल्प करो वो पूरा हो जाए। अब कामधेनु गाय में वो शक्ति कहां से आ गई, क्योंकि उसके बछड़े ने शिव की सेवा की, तो वो शिव भक्ति का, शिव जी की सेवा करने का फल मां को भी प्राप्त हो गया और वो शक्ति उसको आ गया कि उसके सामने बैठकर जो कल्पना करे वो वस्तु उपलब्ध हो। तो वो भगवान शिव के चरण में, क्या वो कामधेनु गाय की शक्ति नहीं है क्या? अब वो चरण की सेवा जिसको प्राप्त हो, सान्निध्य जिसको प्राप्त हो, उसको फिर क्या अन्य फलों के लिए अन्य देवताओं की उपासना करने की जरूरत पड़ेगी? ये देख लो गीता में कहा है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति यदवद तदवद कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। मुमुक्षुओं की सारी कामना तो परमात्मा में पहुंचने के बाद सब कामना शांति को प्राप्त हो गई, अब कामना कोई रहा ही नहीं। जैसे सारे नदी दौड़ दौड़ कर समुद्र में पहुंचते हैं और समुद्र में पहुंचने के बाद नदियों की गति रुक जाती है, इसी तरह जीवात्माओं की मन की वृत्ति जो काम्य पदार्थों के प्रति की कामना वृत्ति है, वो परमात्मा को प्राप्त होने के बाद वो काम्य वृत्ति खत्म हो जाती है, कुंठित हो जाती है। अब वो भाव उपमन्यु को प्राप्त हुआ। पार्वती के बारे में भी यही है, आए कथा है पुराण में, भगवती पार्वती पहले जन्म की सती और दूसरे जन्म में पार्वती, उन्होंने निश्चय कर लिया कि शिव के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, और उसके लिए उन्होंने घोर तपस्या किया। तो एक बार भगवान शिव खुद गए कि क्या ये मेरे अलावा और किसी को नहीं चाहती है, मुझे ही चाहती है, देखे तो सही। रूप बदलकर पहुंच गए और पार्वती के सामने शिव की बड़े भारी निंदा की। बड़े भारी निंदा की शिव जी की उन्होंने, अरे वो भूत प्रेतों के साथ रहता है, उनके साथ तो कैसे रहेगी, है उसको छोड़ दे, उसका भजन करना छोड़ दे, शादी करनी हो तो मेरे से कर। उस भूत प्रेत लेकर चलता है, न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना, बड़ी निंदा कर दी। तो सती ने भी यही कहा है, जो उपमन्यु ने जवाब दिया है, मेरे सामने ऐसी बात मत करो, तुम यहां से चले जाओ, शिव को छोड़कर मैं किसी अन्य को स्मरण कर ही नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती हूं, और तुम ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हें तो मैं मार नहीं सकूंगी, मैं अपने शरीर को, क्योंकि मैंने शरीर को परित्याग करने का प्रैक्टिस किया है। किसने? तुम लोगों ने नहीं, पार्वती ने। उन्होंने ये ट्रेनिंग कहां लिया था बोलो, जब सती थी तब लिया था कि नहीं, दक्ष के सामने, दक्ष के यज्ञ में स्वयं अपने योगाग्नि से प्राणायाम करके अपने चित्तवृत्ति को अग्नि में धारणा की और अग्नि अमूर्त अग्नि वही मूर्त हो गया और शरीर प्रदग्ध हो गया। वो ट्रेनिंग तो, वो अभ्यास तो पार्वती को है ना।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om. ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामे प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागो यः सहौजो मयि प्राणः

बृहस्पतिरमे ददातु सन्नो भवतु भुवनस्यस्पदिः सन्नो भवतु भुवनस्यस्पदिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। 2007 एवं 2008 इस एक वर्ष में हम लोग स्वनाम धन्य प्रेम पुरी जी महाराज के स्वर्ण निर्माण महोत्सव को मना रहे हैं। इसी उपलक्ष में भागवत एवं स्वाध्याय प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। निर्वाण के द्वारा निर्माण तक पहुंचना है। निर्वाण तो सभी के जीवन का लक्ष्य है ही। निर्वाण मतलब कि जो हमारे जीवन में अनादिकाल से अविद्या वासना कामना जो पुरत्रय है, पुरत्रय का अर्थ है शरीरत्रय, तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो हमारा अन्नमय है, इसका आधार सूक्ष्म शरीर है जिसमें पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके समुदाय का नाम सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा है अविद्या शरीर जिसको कहते हैं कारण शरीर। तो स्थूल शरीर की प्राप्ति प्रारब्धानुसार होती है। प्रारब्ध एक कर्म विशेष का नाम है जिसको आप प्रारब्ध कहते हैं, नसीब भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं, लक भी कहते हैं, सब एक ही चीज है। बहुत सारे ढेर कर्म होते हैं पर जिन कर्मों के द्वारा हमें पांच भौतिक शरीर मिलता है, जिन कर्मों को इस शरीर से भोगा जा सकता है, चाहे वह सुकृत कर्म हो या दुष्कृत कर्म हो, उस कर्म समुदाय का नाम प्रारब्ध है जिसके अनुसार हमारा शरीर बनता है, शरीर का कारण है। तो प्रारब्ध का संबंध केवल स्थूल शरीर के साथ होता है, परंतु पुरुषार्थ का संबंध देहत्रय से है, स्थूल से भी है, सूक्ष्म से भी है, कारण से भी है। यदि आप केवल इस शरीर के द्वारा धनार्जन करें तो इस देह की यात्रा अच्छी प्रकार से चलेगी, परंतु धन के साथ धर्मानुष्ठान करें, वेदांत का चिंतन करें तो जब ज्ञान होगा तो विद्या शरीर का नाश होगा, उपासना संतःकरण निर्मल होगा। तो पुरुषार्थ का संबंध देहत्रय से है, प्रारब्ध का संबंध केवल स्थूल शरीर के साथ है।
इसलिए भगवान शंकर का एक नाम है त्रिपुरारी। जो तीन पुर है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों शरीर से जीवात्मा को हटाकर उसकी अपने स्वरूप को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी भी है। तो निर्वाण तभी मिलता है जब हम ये जो देहात्रय के बंधन में है, स्थूल शरीर के बंधन में है, सूक्ष्म शरीर के, सूक्ष्म शरीर तब तक स्थायी है जब तक मोक्ष नहीं होता है। स्थूल शरीर तो बदलता है, परिवर्तनशील है, बस जो है शरीर छोटा, शरीर से आत्मा निकल स्थूल शरीर समाप्त, परंतु जो सूक्ष्म शरीर है यह तत्व ज्ञान पर्यंत मोक्ष पर्यंत स्थायी है। इसका ज्ञान से ही केवल नाश होता है, तब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर बना रहेगा। सूक्ष्म मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और यही ज्ञान के कारण भी है। तो जो निर्वाण है, निर्वाण को सभी चाहते हैं, परंतु जो सूक्ष्म शरीर में अनादि काल से अनंत कर्मों के जो फल हैं, उन फलों को भोगने की जो इच्छा है, उसी का नाम वासना है। तो वासना कामना रूपी जो बाण है ना, वह चुभे हुए हैं हमारे अंतःकरण में, और जब वह तत्व ज्ञान से निकल जाए तो समझना कि निर्वाण। तो स्वनाम धन्य प्रेम पुरी जी महाराज के निर्वाण महोत्सव को मनाते हुए हम लोग अपने जीवन का निर्माण करते हैं। ये मकान दुकान तो निर्माण खैर होता ही है, ये तो दूसरी बात है, पर इसके साथ में जीवन का, सच्चरित्र का, अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो हम लोगों ने शिव महिमन में 14वें श्लोक 13वें तक विचार हुआ है, आज 14वां श्लोक है। 14वें श्लोक के पहले तीन युगों की कथाओं को बतला दिया, सतयुग त्रेता द्वापर। सतयुग की कथा बतलाई कि भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा के सम्मुख ज्योतिर्मय पिंड रूप से आविर्भूत हुए, यह सतयुग की कथा थी। दोनों के मध्य में कला हो गया कि कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ, आज भी होता है ना, कौन बड़ा कौन छोटा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जगत का पिता हूं, सर्जन करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा भी पिता हूं। विष्णु भगवान ने कहा यह बात तो ठीक है, तुम जगत के जरूर पिता हो, परंतु तुम्हारा पिता मैं। ब्रह्मा जी ने तर्क दिया, यदि तुम जो है मुझे बना लेते तो जगत भी बना सकते थे, इसीलिए तुम हमारे पिता नहीं हो सकते, बल्कि मैं तुम्हारा भी पिता हूं। ये पितृत्व को लेकर झगड़ा छिड़ गया। जब दोनों में बहुत विवाद हो गया तो भगवान शंकर दोनों के सामने ज्योतिर्पिंड रूप से आविर्भूत हुए। तो इस कथा को वहां बतला करके सतयुग की कथा को, लीला को बतलाया। इसके बाद त्रेता की कथा आई रावण की, कि रावण किस प्रकार से भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया, और वरदान पाने के बाद स्वयं कैलाश गया अपने भुजाओं को अजमाने के लिए, कितना बल है। इसके बाद द्वापरांत की कथा है बाणासुर की। अब जो है 14वें श्लोक में आपको पौराणिक कथा बतलाएंगे, इसका संबंध पुराण से है। 13वें श्लोक में बतलाया था, श्लोक निकाल लीजिए, 13वां श्लोक, तेरहवें श्लोक के अंतिम चरण में कहा था, श्री महिमन की विशेषता है कि प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण में श्लोक के सार बात को बतलाते हैं, कहीं भी देख लीजिए।
तो अंतिम में कहा था कि न कस्यापि उन्नत्यै भवति शिरस्त्वयि अवनति, त्वयि अवनति शिरसः कस्यापि उन्नत्यै न भवति। आपके चरणों में सिर झुकाना अवनति किसके उन्नति के लिए, विकास के लिए नहीं होता है, अर्थात सबके विकास के लिए होता है। ये जो मनुष्य का सिर है, यह हमारे शरीर में प्रधान अंग है, परंतु देहाध्यास के कारण मनुष्य सिर विषयों में तो झुकाता है पर भगवान के चरणों में नहीं झुकाता। विषय मतलब रूप रस गंध स्पर्श, ये विषय है। विषय शब्द की व्युत्पत्ति है, विशेषेण सिनोति बधनाति इति विषयः। विसर्ग है, सिंह बंधने धातु है, सिंह धातु बंधन अर्थ में होता है, तो विशेष प्रकार से या विविध प्रकारेण सिनोति बधनाति, तो नाना प्रकार से जीवात्मा को बांधे, उसका नाम है विषय। और विषय से सुख आज तक किसी को नहीं मिला है, न मिलेगा न मिल सकता है। परंतु जब भी हम प्रातः काल उठते हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारी इंद्रियां विषय को ही ग्रहण करती हैं। इंद्रियों का दोष है, परांचिखाने व्यतिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्य दिनांतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मा नमैच्छत। कोई धीरा आत्मा की जिज्ञासा करता हुआ इंद्रियों को वश में करके उस आत्मा का साक्षात्कार करता है, तो स्वयंभू नहीं, हमारे इंद्रियों को बहिर्भूत कर दिया, हिंसित कर दिया। यदि आपको विषय से बंधन तकलीफ दुख हो रहा हो तो सबसे बढ़िया उपाय है कि वहां से आप अंतर्मुख हो जाएं। और जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे ये तब तक विषय जो है हमें व्यथित करते रहेंगे, क्योंकि विषय का लक्षण यही है, जो नाना प्रकार से अपने आप में बंधन करे उसका नाम विषय है। और मनुष्य जब विषय से व्याकुल हो जाता है तो फिर जैसे पक्षी आकाश में उड़ते उड़ते थक जाती है, तो थकने के बाद पक्षी अपने पंखों को फैला करके घोंसले में प्रवेश कर जाती है। ऐसे जागृत स्वप्नावस्था के विषयों को सेवन करते करते जब हम थक जाते हैं तो सुषुप्ति स्थान में जाते हैं, इसका नाम संप्रसाद है। असुसुप्ति में जाने के बाद कोई वहां विषय नहीं होता है, विषय से जब सुख हासिल नहीं हुआ या जीवात्मा थक गया। जीवात्मा किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा, विद्यारण्य स्वामी ने पंदसी में अर्थ किया है कि जीवात्मा में तीन चीजें होती हैं, सूक्ष्म शरीर, चैतन्य का आभास और वह जो चेतन अधिष्ठान है, तीनों के समुदाय का नाम है जीवात्मा। जैसे कि घड़ा में जल है, जल में सूर्याभास है और सूर्याभास का अधिष्ठान सूर्य। यदि घट में जल न हो और जल में सूर्य का आभास न पड़े और गगन में सूर्य न हो तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर तीनों के समुदाय का नाम है जीव। उनका श्लोक है उनकी भाषा में, चैतन्यम यत अधिष्ठानम, नंबर एक चैतन्यम यत अधिष्ठानम, दूसरा है लिंग देहश्चय पुनः, लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है चैतन्यम यत अधिष्ठानम तत् संगम जीव उच्चते। स्वामी विद्यारण्य की भाषा में
इसके संघ को समुदाय को जीव कहते हैं। चैतन्य जिसका अधिष्ठान है, जो लिंग देह है और फिर चिदाभास चैतन्य का भास पड़ता हो, इन तीनों के समुदाय को जीव कहते हैं। तो यह जो जीवात्मा है, यह सीमित अहंकार प्रथम करता है। सीमित मतलब अयम अहम अस्मि, अयम के साथ अहम का तादात्म्य अध्यास हो गया। जैसे अग्नि जलाती है, परंतु अग्नि का लोहे के साथ इतना तादात्म्य अध्यास हो जाता है कि हम लोग कहते हैं कि लोहा जला रहा है। लोहे में दग्धित सामर्थ्य नहीं है, फिर भी तादात्म्य अध्यास से लोहे में दग्धित्व का हम लोग का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यहां पर भी इतना देहाध्यास हो गया, अयम का अहम के साथ तादात्म्याध्यास हो गया। अयम मतलब कि यह जो पांच भौतिक शरीर, और अहम मतलब कि शोधित जो चैतन्य है, जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। त्वम पद का वाच्यार्थ तो यह शरीर कहलाता है, और त्वम पद का लक्ष्यार्थ है साक्षी कुटस्थ, जिसको आत्मा कहते हैं। तो अयम अहम अस्मि इस प्रकार के अध्यास होने से अभिमान पैदा होता है। अयम मतलब यह जो दिखाई दे रहा है 3.5 हाथ का शरीर, उसमें अध्यास कर लिया कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं सेठ, मैं शूद्र। इसके बाद में उसकी कुशलता का अभिमान कर लिया, फिर जाति का कर लिया, देश का कर लिया, मैं अमेरिकन, मैं इंडियन, मैं जापानीज, ये तरह तरह का अभिमान है। तो जैसे ही अयम अहम अस्मि ऐसा अभिमान हुआ, इस देहाध्यास अभिमान हुआ, अभिमान होने के बाद फिर मनुष्य अपना आपा खो देता है, और अभिमान के चक्कर में पड़कर अपने जीवन में भटकता रहता है। अभिमान हुआ कि बस संसार का चक्कर काटते रहो, और अभिमान से जीवन भी यह चल रहा है, बस थोड़ा सा आपको करना है, कुछ करना नहीं, अभिमान के आगे स्व लगा देना है। जो अभिमान है उसके आगे हमें स्व जोड़ देना है, तो बन जाएगा स्वाभिमान। इसी स्वाभिमान को महावाक्यों में अहम ब्रह्मास्मि कहा है। अहम अस्मि इतना तो आप जन्म से जान रहे हैं, कुछ तो जन्म से सीखा, इसके बाद माता पिता सिखा दिए कि देख तू मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा। इसके बाद विद्यालय में कुछ सीखा कि मैं डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर। कुछ समाज ने सिखा दिया तुम ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के हो। कुछ देश ने सिखाया कि तुम इंडियन हो, जापानीज हो। तो अहम अस्मि यह तो स्वाभाविक है, इसमें एक ब्रह्म को जोड़ दें, स्व को जोड़ दें, तो बन जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। तो स्वाभिमान से तो मनुष्य का जीवन विकसित होता है, हमारा जीवन निर्माण होता है, मतलब निर्वाण से निर्माण की तरफ बढ़ेंगे। वैसे निर्वाण शब्द का गीता में अर्थ ब्रह्म किया है कि योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, गीता में आता है ना। ब्रह्म निर्वाण शब्द की जब उत्पत्ति किया भगवान शंकराचार्य ने, तो अर्थ किया ब्रह्मैव निर्वाण ब्रह्म निर्वाण, जो ब्रह्म है वही निर्वाण है, कर्मधारय समास। ऐसा नहीं कि ब्रह्म अलग निर्वाण अलग, दोनों एक ही चीज है। तो निर्वाण के साथ हम लोग अपने जीवन का निर्माण करें, मस्तिष्क का निर्माण करें, यही जो है इस निर्वाण उत्सव के मनाने की सफलता है। तो यह जो अभिमान है, इस अभिमान को यदि हम
भगवान के चरणों में झुका दे तो स्वाभिमान हो जाता है, और स्वाभिमान होने के बाद वह उसके बाद हमारा जीवन विकसित हो जाता है। यह बात बतलाया 13वें श्लोक के अंतिम में, न कस्यापि उन्नते, अर्थात सबके उन्नति का यह साधन है। अब यहाँ बतला रहे 14वें श्लोक में जो पौराणिक कथा है, इसका उच्चारण पहले कर लें। अकांड ब्रह्मांड क्षय

पहले इसका शब्दार्थ देख लें। त्रिनयना इस संबोधन है, भगवान शंकर के तीन नयन है, तीन नयन और किसी देवता के नहीं है, चाहे भगवान विष्णु हो या श्री कृष्ण हो या राम हो या ब्रह्मा जी हो, त्रिनयन केवल भगवान शंकर आशुतोष है। इनका एक विशेष नाम आशुतोष भी है, आशु शीघ्रम तुष्यति कुप्यति वा, बहुत जल्दी खुश भी होते हैं, बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं, क्रोध भी बहुत जल्दी इन्हें आता है। तो त्रिनयन का अर्थ है सूर्य चंद्र और तीसरा जो ज्ञान नेत्र है, हे त्रिनयन, और तीसरा अर्थ यहां पर अग्नि व्यर्थ करते हैं। ज्ञान मतलब वेदांत के दृष्टि से तीसरा है ज्ञान नेत्र, और भौतिक दृष्टि से अग्नि अर्थ करते हैं। सूर्य चांद तो मशहूर है और तीसरा अग्नि, ये तो भौतिक व्यवहारिक अर्थ है, परंतु वेदांत के दृष्टिकोण से स्वयं मधुसूदन सरस्वती ने अर्थ किया है विवेक अग्नि, ज्ञान अग्नि। तो हे त्रिनयन, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा विधेय। कांड बोलते समय को, अकांड मतलब कि असमय, ब्रह्मांड के विनाश को देखकर देवता और असुर चकित हो गए, अचंभे में पड़ गए, तब आपने कृपा करके विषम संधृतवतः उस हलाहल विष का उपसंहार किया, पान किया, इससे तव कंठे कलमाशः आसित, आपके कंठ में वह एक प्रकार से नीला धब्बा पड़ गया। सस्त्रियम न कुरुते, वह आपके शोभा को ही बढ़ा रहा है। अहो भुवन भय भंग व्यसनिनः विकार अपि श्लाघ्य, संसार के भय को भंग मतलब नाश करने का स्वभाव है जिसका, भगवान शंकर संसार के भय को भंग मतलब नष्ट कर दिया। भंग का अर्थ भांग नहीं करना, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ कर लेते, बहुत अच्छे से लोग हमको मिले। कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा में मैं गया हुआ था, परंतु दुर्भाग्य से जिस महात्मा के साथ गया, जो हम यात्रा करवा रहे थे, मरवक यात्रा के थे, उन्होंने वहां के महंत को बदला दिया था। दंडबेश्वर जो वहां का प्रसिद्ध मंदिर है, उनके उस महंत को बदलाया था कि भंग, भंग का अर्थ यहाँ पर भांग होता है। भगवान शंकर भंग लिखा ना, व्यसनिना, भांग के व्यसनी थे, आदि थे। जब मैं पहुंचा तो मुझसे पूछे कि आप आचार्य हैं कैलाश के, आप बदले

0: बताइए, जब उसका शरीर चिन्मय बपू है, चिदंबर है, तो वहां पर भांग की कहां गुंजाइश है। हाँ, श्रद्धा भक्ति से भेंट करे दूसरी चीज है, क्योंकि शिव भक्त चरित्र में एक ऐसी कथा आती है। एक धीर नामक भील था, बड़ा ही तेजस्वी था।
1: डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर, द फॉलोइंग इज अथर्वण वेदा सौनक शाखा कांडम 2 सूक्त 13।

0: சிவாய. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: கேனே லகி ஏக் தோ யே, பிர ஆகே ஓர் கா, சௌ வர்ணை லாங் லாக்ரைர் விலிகதி வசுதா அர்க்கமூலஸ்ய ஹேது. ஆகே சங்கேத் கியா, ஜேசே கிசான் லோக் ஹோதே ஹேன் தோ க்யா கர்தே ஹேன், பூமி கா கர்ஷண கர்தே ஹேன் ஔர் சுந்தர் உஸ்மே ஃபஸல் உகாதே ஹேன். अब भूमि को निर्मित करते हैं, भूमि को भुरभुरा बनाते हैं, तो किसके द्वारा? हल के द्वारा. अब वो हल किसी के पास लोहे का हल होता है, किसी के पास काठ का होता है, लेकिन फाल लोहे का होता है उसमें. लेकिन यहां क्या कह रहे, सौ वर्णई, आपके पास हल है, आप भी एक किसान हो, क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात समझ लीजिए, तो आपके पास भी हल है, लेकिन आपको जो हल दिया है वो कैसा है? कहने लगे उसमें जो फाल है वो सुवर्ण का है. ऐसे पवित्र वस्तु सुवर्ण, ऐसे सुवर्ण का जो है फाल दिया गया है, और किस लिए? का भूमि को बनाने के लिए, जिसमें सुंदर फसल पैदा हो. तो कहने लगे वो तो हमको दिया और उसका हम प्रयोग भी कर रहे हैं, भूमि को जोत भी रहे हैं, लेकिन जोत करके भूमि तैयार करके हम उसमें वपन क्या कर रहे हैं, बीज क्या लगा रहे हैं, फसल क्या लगा रहे हैं? तो क्या कहा? विलिखति वसुधा अर्कमूल से है, तो हम उसमें आग का बीज बो रहे हैं. क्या बो रहे हैं? आग का. और आग का बीज आप जानते हो तो समझते चलो. यहां जो कहा पहले, स्थाल्याम वैदूर्यमय्याम पचत च लसुनम इंद्र नई चंद्रोत्थई, हमको उस परमात्मा ने कृपा करके सर्वत्र जो है लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम, इसकी दुर्लभता की चर्चा की गई. और ये इतना हीरे जवाहर की कीमत के समान कीमती है, क्योंकि हम इससे चाहे वैयम प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वरूप की

0: प्राप्ति कर सकते, वो विचार करने का ये उत्तम साधन है। लेकिन हम कर क्या रहे, तो क्या संकेत किया, कहा लहसुन पका रहे। लहसुन का मतलब क्या, लहसुन यद्यपि गुड़ भी उसमें बहुत है, इसलिए कैप्सूल भी निकाल दी, लेकिन एक उसमें बड़ा दुर्गुण है। वो दुर्गुण क्या है, जिस पात्र में आप लहसुन को रख दो, फिर उसको उस पात्र से निकाल दो और उस पात्र को धो दो, लेकिन फिर भी उस पात्र में से बदबू जाती, वो बदबू आती, उसके संस्कार जल्दी निवृत्त होते नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये लहसुन क्या है, लहसुन कोई और नहीं। यहां संकेत वर्तरी करते हैं कि अधर्म, अन्याय, विपरीत दिशा में जाना, असत कर्मों को करना, यही क्या है, यही लहसुन। शरीर मिला है हमें शुभ कर्मों को करने के लिए और शुभ कर्म के द्वारा हमें शुभ गति प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, स्वस्वरूप को जानने के लिए, लेकिन उस शरीर से हम क्या कर रहे हैं, कहने लगे अधर्म है? अधर्म के द्वारा हम सुख चाहते, अन्याय के द्वारा हम सुख चाहते, तो इसलिए कहा। और वो अधर्म क्या करता, जैसे उसकी लहसुन की बदबू नहीं जाती, वैसे ही इस अधर्म के संस्कार भी जल्दी पीछा छोड़ते नहीं। वो क्या करते हैं, वो अधर्म के संस्कार पुनः पुनः हमें इसी संसार के अंतर्गत जो है लगाए रहे, वो जल्दी समाप्त होते नहीं। इसलिए कहने लगे ये तो करते हो और ये जब कर भी रहे हो तो कैसे करते हो, अधर्म उसमें पका रहे हो, उसका भक्षण भी कर रहे हो, लेकिन अधर्म पकाने में प्रयोग किसका कर रहे हो, तो चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी का मतलब क्या है, जो पूर्व में हमने शुभ कर्म किए, पूर्व में हमने पुण्य कर्म किए, उन्हीं का तो भोग कर रहे हो, उन्हीं का तो भोग हो रहा है, तो उन्हीं को हम जला करके नष्ट कर रहे हैं, उन्हीं को परिसमापन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, चंदन की लकड़ियों को। तो पूर्व में हमने जो शुभ कर्म किए, पुण्यात्मक कर्म किए, उनका तो हम भोग कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, और जो है आगे क्या कर रहे हैं, तो कहा अशुभ कर्म। तो शरीर किस लिए प्राप्त हुआ, तो उसके लक्ष्य को न समझ करके और हम ये यद कर रहे हैं। और कहने लगे इतना ही नहीं, अब इसमें जो है इस सुंदर भूमि बना करके और सुंदर जो है फसल तैयार, सुंदर फल की प्राप्ति करने के लिए और साधन मिला है, तो ये मन ही जो है वो क्या है, मन यद्यपि स्वर्ण के समान पवित्र है, जैसे स्वर्ण पवित्र होता है वैसे ही हमारा मन भी, हम मन से सुंदर संकल्प कर सकते हैं, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, लेकिन हम वो शिव संकल्प न करके और अशिव संकल्प ही करते रहे तो अशिव ही संकल्प होते। भगवान परमात्मा का संकल्प कहां बन पाता, सारे संकल्प हमारे जो बनते हैं वो क्या है, संसार के ही बनते हैं। और संसार क्या है, तो संसार तो अशुभ ही रूप है, सावा असत रूप है, विवर्त रूप है, तो वो संकल्प तो हमारे अंदर होते। एक क्षण के लिए परमात्मा का संकल्प आता भी है, लेकिन तुरंत जो है विकल्प खड़े हो जाते हैं और संसार के ही विकल्प हमारे सामने। तो इसलिए कहा कि मन मिला है हमें किसके लिए, इस हृदय रूपी भूमि को जोत करके, मन विचार के द्वारा, और विचार के द्वारा, विचार ही जोतना है, विचार के द्वारा उसे योग्य बनाना, उसे जो है पात्रता प्रदान करना, और फिर उसमें जो है क्या फल देना है, क्या बीज बोना है, तो उसमें जो है अपने स्वरूप का बोध है, अहम ब्रह्मास्मि आदि सत्य का संकल्प, ये जो है उसमें बीज डालना। लेकिन और वो बीज डालोगे तो सत्य क्या सिखाता, सर्वत्र सौहार्द, सर्वत्र प्रेम, ये सब सत्य का धर्म है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके विपरीत। आग क्या करता है, आग जो है, आग का दूध आपके हाथ में लग जाए और उसका हाथ आपकी आंख में लग जाए तो क्या कर देता है, आंख को ही समाप्त कर देता है, आपकी दृष्टि को ही समाप्त कर देता है। तो जिसमें जो है हमें सुंदर जो है फल बोना चाहिए, सुंदर बीज बोना चाहिए, वो न बो करके हम क्या बो रहे हैं, केसर बोना चाहिए, कस्तूरी बोना चाहिए, वो न बो करके क्या बो रहे, कहा आग, और आग क्या करता तो दृष्टि को ही ले बैठता, तो वो क्या है ईर्षा। सर्वत्र हमारा वैमनस्य ईर्षा के बीज हम उस अंतःकरण में डाल रहे हैं, उसमें जोत करके और वो डाल रहे हैं, जिसका परिणाम क्या होता, हमारा विवेक ही समाप्त, विवेक ही नहीं रह जाता, वो हमारी विवेक ईर्षा हमारी विवेक दृष्टि को ही समाप्त कर देती। और कहने लगे इतना ही नहीं, और भी प्राप्त हुआ, कितना प्रसाद मिला, चित्त्वा कर्पूर खंडान वृत्तमिह कुरते कोद्रवाणम समन्ता। बढ़िया भीमसेनी कपूर है, जिसको भून करके आटे में डाल दो तो आटा कैसा हो जाता, सुगंधित हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। जिसको पहले लोग प्रसाद में बनाते थे, सत्यनारायण की कथा करते थे, तो उस कपूर आदि को डाल करके आटा को भून के ही प्रसाद बनाते, और उसको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता। तो जिस कर्पूर के द्वारा वह आटा भी सुगंधित और स्वादपूर्ण हो जाता, ऐसा हमें जो है मिला हुआ है कर्पूर के समान क्या, बुद्धि। बुद्धि भी हमारी कर्पूर के समान सुख देने वाली पवित्र है। तो चित्त्वा कर्पूर खंडन, वो बुद्धि तो हमारे पास है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हम कहां कर रहे, उस बुद्धि को हम किस में लगा रहे। तो कहले को द्रवाणम समन्ता, अत्यंत तुच्छ जो अनाज जो है, है उस अनाज की सुरक्षा के लिए कीड़े उसमें न पड़े, इसलिए जो है उसमें हम उसका प्रयोग कर रहे। अब संकेत किया चित्त्वा कर्पूर खंडान वृत्तिमिह कुरते कोद्रवाणम समन्ता। अब वृत्ति वहां क्या बनानी चाहिए, क्या वृत्ति करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे। वह बुद्धि हमें मिली है किसके लिए, अभेद ज्ञान के लिए। अभेद ज्ञान की हम प्राप्ति करें, हमारे जीवन में अभेदत्व आए, समाज में भी हम एकता को प्राप्त हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस बुद्धि का प्रयोग किसमें कर रहे हैं, कि कितना अधिक से अधिक हम वेद डाल सकें। वेद डालना बड़ा सरल है, लेकिन अभेद करना बड़ा कठिन। तो बुद्धि हमें प्राप्त हुई है अभेदक ज्ञान के लिए, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हम किसमें कर रहे हैं, कहा वेदक ज्ञान, माने खंड करना, खंडों में अखंडता को न करके हम जो है खंड करते। और आप जानते हो एक दृष्टांत महात्मा लोग देते ना, वेद कितनी जल्दी पड़ जाता। कहा एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी में भेद डालने के लिए, दोनों पत्नी दंपति बड़े सुखपूर्वक रह रहे, लेकिन उसको ईर्षा हो गई, तो उसने कहा इसमें भेद डाल दें। तो उसने कहा भेद डालने के लिए क्या किया, अब देखो बुद्धि का प्रयोग, इसमें बुद्धि सफल हो जाती। लेकिन जहां दो झगड़ रहे हो, जहां दो में विपरीतता हो, वहां एक करना ये बड़ा कठिन। तो उसने कहा जाकर के, अरे पत्नी से कहा तेरा पति तो लूणिया है, नमकीन है, और उससे कहा जाकर के तेरी पत्नी तो सर्पिणी है। और ऐसा जब कहा, उसने कहा नहीं नहीं, कहा नहीं तो प्रयोग करके देख ले। और उसने प्रयोग किया तो पति भी समझ गया कि हाँ ये सर्पिणी सर्पिणी भी चाटती, तो ये भी चाट रही, चाट के देख रही, और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तो भेद डालना, हम थोड़ा सा संकेत कर दें तो भेद तो तुरंत पड़ जाता है, लेकिन एकत्व करना बड़ा कठिन है। ऐसे ही यहां पर भी अवेद ज्ञान के लिए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जो अवेद ज्ञान है, इस अवेद ज्ञान को करने के लिए हमें बुद्धि मिली है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हम किसमें लगा रहे हैं, भेद ज्ञान। कितना भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि दौड़ के कहां जाती, वेद ज्ञान में ही जाती। अवेद ज्ञान को जो है ग्रहण करना बड़ा कठिन हो जाता। और ये संकेत करते हुए अंत में उपसंहार करते हुए वर्तरी ने लिखा प्राप्त इमाम कर्मभूमि, संकेत कर दिया ये कर्मभूमि, यद्यपि कर्म की निंदा भी की गई, लेकिन यहां संकेत करते हैं प्राप्त इमाम कर्मभूमि। ये शरीर क्या है, कहने लगे ये कर्म भूमि है। ये क्या है, कर्म भूमि, जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति हो। और इस कर्म भूमि में साधन भी तुम्हें दिए हैं बहुत सुंदर, बुद्धि मन आदि जिनके द्वारा तुम उत्तम से उत्तम वस्तु की प्राप्ति कर सकते हो। चाहो तो वेद ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो और न चाहो तो है वेद में ही वर्त करके और जीवन को जो है सहांद में ला जा सकते हो। तो ये संकेत किया तो प्राप्य माम कर्म भूमिम न चरति, इस ऐसी कर्म भूमि को प्राप्त करके भी और आचरण करने में असमर्थ रहता है, आचरण नहीं कर पाता है, प्रयास करते हुए भी और फिसल जाता है। प्रयास करता है लेकिन प्रयास करते हुए भी सफल नहीं हो पाता है तो क्या है? कहने लगे यस तपो मंद भाग्य, जीवन में तप नहीं है, यही उसकी मंदता है। कहा तप क्या है? तो तप के लिए कहा मनश्चेन्द्रियाणाम ऐकाग्र्यम इति तपः, शरीर को धूप में सुखाने का नाम तप नहीं, शरीर का कर्षण करना तप नहीं। तब तप क्या है? भगवत भादाचार्य आचार्य शंकर ने तप का लक्षण किया। कहने लगी तप क्या है? तो कहने लगी मनश्चेन्द्रियाणाम ऐकाग्र्यम इति तपः, हमारा मन जो हमें ये साधन प्राप्त हुए और इंद्रिय आदि, ये हमारा अंतःकरण और हमारी इंद्रियां कहां लगे? तो कहने लगे जो अग्र है उस अग्र में मन और इंद्रियों को जो एक है और अग्र एक एकाग्रम एक है और अग्र है उसमें मन को लगाने का नाम ही है क्या? तप। और यदि ये तप हो जाता है तो तप ही क्या करता है? कहने लगे हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता। और ये जब हम तप करते हैं उसमें जब लगाते हैं तो उसके उपाय क्या है? तो उसके लिए संकेत किया कि वो एक क्या है, उसको समझने के लिए उसको जानने के लिए ही जो है ये उपदेश आदि की प्रक्रिया है, आचार्य आदि की प्रक्रिया है, शास्त्र आदि उसके साधन है। यदि उसे हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम मार्ग पर चल पड़ते हैं। एक ट्रैफिक लाल बत्ती है, हरी बत्ती, और वहां ट्रैफिक का सिपाही भी खड़ा, बोर्ड भी लगा, तीर भी बना दिया, क्या कहा कि अमुक मार्ग अमुक जगह जा रहा है ना, और अमुक मार्ग अमुक जगह जा रहा है, आपने बोर्ड पढ़ लिया, उसके तीर के संकेत को देख लिया और उसके अनुसार यदि आप मार्ग का मार्गन करते हो तो क्या पहुंचते हो? अपने लक्ष्य पर। लेकिन वहीं पर एक बात और, क्या कहा? वो बत्तियां लगी लाल और हरी, वो क्या संकेत करती? मार्ग तो है लेकिन अभी रुक जाओ, और नहीं तो वो सिपाही खड़ा हुआ है वो क्या करता है? वो इधर करेगा, इधर करेगा, ये करेगा, इधर जाओ, रोकेगा। तो क्या करता? विधि और निषेध कर, कब तुम्हें चलना है कब नहीं चलना। मार्ग तो सही है लेकिन मार्ग पर चलने के लिए भी वहां पर जो है विधि और निषेध करती है। ठीक इसी प्रकार से यदि उसको आप उस नियम को आप जो है स्वीकार करते हो तो आप जो है निर्विघ्न है रूप में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। और यदि आप उसको स्वीकार नहीं करते हो और चल पड़ते हो तो कुछ नहीं होगा, तो चालान तो हो ही जाएगा है, कुछ भी नहीं होगा तो चालान तो दंड तो मिलेगा, और जो है कार में कहीं बाधा भी आ सकती है, आपने छोड़ दिया उधर से दूसरा आ गया तो ये सब होगा। इसी प्रकार से यहां संसार के अंतर्गत ये आचार्य को भी अर्थात उस ट्रैफिक के सिपाही की भी बात को मानना चाहिए, किस लिए? जीवन को सुचारू रूप से चल। ऐसे ही यहां पर ट्रैफिक का सिपाही यदि खड़ा हो पिए शराब तो भी क्या होगा? तो भी बात नहीं बनेगी। तो दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। तो यहां भी संकेत वही करते हैं कि आचार की प्रसादता भी होनी चाहिए, ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, शास्त्र की कृपा भी होनी चाहिए और अपनी कृपा भी। जब चारों कृपाएं मिल जाती हैं तो हमारा काम ठीक। तो ये संकेत किया। अब यहां जो है ऋषि कहता है आचार प्रसादता, आचार की तो प्रसन्नता है, आचार का प्रसाद है, आचार की कृपा है, क्योंकि इतने गूढ़तम इतने रहस्यात्मक उस सार को उन्होंने जो है हमारे लिए है एक सरलीकरण करके शोध करके और उन्होंने हमारे लिए रखा है, तो ये उनका क्या है? प्रसाद। इसलिए संकेत किया कि उन्होंने भाष्य करके इस श्रुति पर, उपनिषद पर, हमारे ऊपर जो प्रसाद में दिया है, अपनी कृपा जो की है, उनके प्रसाद से ही अब हम क्या कर रहे हैं। कहा उन्होंने दे तो दिया है तो सार, लेकिन सार में से भी ग्रहण करना, उस सार को कैसे ग्रहण किया जाए, सरलता से कैसे प्राप्त हो, इसके लिए जो है हम उपाय कर रहे हैं। सार तो मिल जाए, लेकिन सार को जब तक ग्रहण नहीं कर पाओगे तब तक भी वो सार क्या करेगा। है? सुंदर घी मिल गया, और घी नहीं, इस सार को तत्व शब्द से कहा, श्वेता सेतु उपनिषद में वहां मंड शब्द आया। कहा मंड निवह, वो सार कैसा है? कहा मंड की तरह। और मंड क्या होता? वहां पर तत्व शब्द से, सार शब्द से संकेत किया, वहां उद्धरण दिया कि मंड विव, मंड की तरह से। ये श्वेता सेतु उपनिषद में ऐसा है, स्वाध्याय भी आप लोग करते रहे तो उसमें आया है कि मंड विव। वो मंड क्या है? तो ये कोई गहन बातें नहीं। आप मंड किसे कहते हैं तो वहां समझना है कि शब्द का अर्थ क्या। यही आचार्य अध्यात्मियों की कृपा हो। वहां पर जो है, जैसे आप बढ़िया दूध गऊ का निकलवा के लाई, आपने गर्म किया, गर्म की करे ठंडा किया, जामन लगा दिया, दही बन गया, दही करके उसे बिलो लिया, बिलो करके मक्खन निकाल लिया, मक्खन को गर्म किया, घी बन गया। और फिर आप जब घी को गर्म करते हो और गर्म करके उस घी को ठंडाने रख देते हो तो क्या होता है? आप कभी ध्यान से देखें, आपका जो शुद्ध घी है और गर्म आपने करके रखा, जेजो ठंडाता जाता, तो जैसे दूध में एक मोटी परत ऊपर आ जाती है जिसे मलाई कहते हो, वैसे ही उस शुद्ध घी में इतनी क्रिया के होने के बाद और उस घी पर एक बारीक परत आ जाती है। उस घी पर जो बारीक परत आती है, उस परत का ही नाम क्या है? मंड है, और कोई मंड नहीं। और वो जो है वो कब निकला, कितने प्रयास के बाद वो निकला, और कितना अंश में निकला, थोड़े अंश, तो वो है उसका सार, वो है उसका तत्व। और उस सार को निकालने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा, लेकिन वो जो है घी में भी स्वाद को देने वाला वो मंड ही है, दूध में भी स्वाद को देने वाला भी वो मंड ही है, और जो है इसी प्रकार से दही में भी स्वाद देने वाला वो मंड था, मक्खन में भी स्वाद देने वाला वो सब में व्याप्त था, लेकिन निकला कब जा करके, कितने परिश्रम के, तो उसी के स्वाद से वो सारा दूध दही आदि स्वादिष्ट था। इसी प्रकार से ये सारा का सारा संसार जो हमें प्रेम का आस्पद लग रहा है, और प्रेम कहां होता, संसार में जितने पदार्थ में स्वाद से युक्त लगते हैं उनसे तो प्रेम होता, और जिनमें स्वाद न हो तो क्या उनमें प्रेम लगेगा। तो जहां सुख समझते हो, जहां स्वाद समझते हो, वहीं तुम्हारा प्रेम होता है। तो अब स्वाद किसको बल को लेकर के, तो कहा तत्व को लेकर। ठीक इसी प्रकार से जहां पर भी आपको सुखानुभूति होती है, इसलिए विषयानंद को भी पंचदशी में वर्णन किया, वहां भी वो भी आभास जो है वो किसका है, कहने लगे उसी का। यम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदम यतः, वो जो आत्मा है वही परम प्रेमास्पद का विषय है, वही सार रूप है, और ऐसे उसके लेकर के ही सर्वत्र जो है स्वाद आनंद सुखाद की प्रतीति होती है। लेकिन उसको निकाले कैसे, वो आएगा कैसे, तब उसके लिए कहा आचार्य प्रसादतः, आचार्य की प्रसन्नता से, आचार्य की कृपा हो, और आचार्य की कृपा ही नहीं अपनी ही कृपा हो, इसलिए कहा है न चरति यत् तपो मंदभाग्यात्। हमको भी अपना तप करना, क्योंकि ये कर्म भूमि हमें जो प्राप्त हुई है, ये साधन हमें जो प्राप्त हुआ है, उस साधन का सदुपयोग हमें भी करना। और जब इस प्रकार से साधन का हम सदुपयोग करते हैं तो आचार की कृपा से वो सार तत्व हमारे सामने आता है, और जब सार तत्व सामने आता है तो हम उसे ग्रहण करने में फिर समर्थ भी होते हैं, और समर्थ होते हैं तो सर्वत्र हमारे लिए भय की निवृत्ति, दुखों की निवृत्ति हो जाती। इसलिए यहां पर भी संकेत यही करते कि जो है ये तैतीरिक उपनिषद का जो सार है, इसका जो वास्तविक तात्पर्य है, उस तात्पर्य को यहां पर जो है बतलाने जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कैसे, तो आचार्य के प्रसाद से। और एक ध्यान और रखना, ये सब कहा कि शास्त्र में तो लोग हम सुन लेते हैं वेदांत आदि के, शरीर को भी मिथ्या का, संसार को भी मिथ्या का, तो इनकी क्या उपयोगिता है, इनसे तो दूर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनकी उपयोगिता है, सर्वथा उपयोगिता नहीं, उपयोगिता है। कब तक है? बढ़िया हापुस आम है, 5000 की पेटी लेके आए, और जब लेके आए तो उसका रस निकाल लिया। अब रस निकाल लिया तो क्या फिर ये कहते हो रस तो आप अपने फ्रिज में रख लेते या उसे ग्रहण कर लेते, लेकिन जो छिलके और गुठली हैं उनको क्या करते हो? हैं? फेंक देते हो। क्या कहते हो? तब ये नहीं कहते वो भी तो 5000 में ही थे, उनकी भी उस समय कीमत 5000 में थी, लेकिन जब उसमें से सार निकाल लिया तब वो व्यर्थ होते हैं, और जब तक उसमें से वह सार नहीं निकला तब तक उनकी भी उपयोगिता है, क्योंकि सार को सुरक्षित रखने में तब तक वो भी काम, और उसी से सार निकलेगा, बगैर उसके सार निकल भी नहीं सकता। ऐसे ही है इस शरीर आदि भी तब तक जो है सार्थक हैं जब तक आपने तात्पर्य को निकाला नहीं, और जब इसमें से जो तात्पर्य जब निकल जाता है उस समय ये शरीर भी निस्सार हो जाता। जैसे आपको गुठली में आसक्ति नहीं रह जाती, छिलके में आसक्ति नहीं रह जाती, उस समय संसार से और शरीर आदि से भी आसक्ति निवृत्त हो जाती है, ऐसा संकेत है। तो ऐसे सार की तरफ संकेत किया गया, अब आगे चर्चा कल करेंगे।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। In this, you are about to listen Shivakriti. The title is Bho Shambho, presented by Dr. B. Umashankar. Thank you. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

प्रातिधर्ता पञ्चदशस्त्वास्तोमः पृथिव्याग्श्रायतु प्रोघमुक्थमव्याथायै स्तभ्नातु बृहत्सामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषायस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राया वरिम्णा प्राधन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्चते त्वा सर्वे ए संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानञ्च साधयन्तु सम्रालासि प्रतीचीदिगा आदित्यास्ते ए देवा अधिपतयः वरुणो हेतीनां प्रातिधर्ता सप्तदशस्त्वा स्तोमः पृथिव्याग्श्रायतु मरुत्वतीया मुक्थमव्याथायै स्तभ्नातु वैरूपज्ञसामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषाजस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राया वरिम्ना प्राधन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्चते त्वा सर्वे ए संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानञ्च साधयन्तु स्वराळस्युदि ईचीदिङ्मरुतस्ते देवा अधिपतयः सोमो ओहेतीनां प्रातिधर्ता एकविज्ञेशस्त्वा स्तोमः पृथिव्याग्श्रायतु निष्के वल्यमुक्थमव्याथायै स्तभ्नातु वैराजज्ञसामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषाजस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राया वरिम्णा प्राधन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्चते त्वा सर्वे ए संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानञ्च साधयन्तु अधिपत्न्यसि बृहती दिग्विश्वे एते देवा अधिपतयः बृहस्पतिर्हेतीनां प्रातिधर्ता त्रिणवत्रयस्त्रिज्ञशौ त्वा स्तोमौ पृथिव्याग्श्रायतां वैश्वदेवाग्निमारुते उक्थे अव्याथायै स्तभ्नीताम् शाक्वररैवते सामानी प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषायस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राया वरिम्ना प्राथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्चते त्वा सर्वे ए संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानञ्च साधयन्तु अयम् पुरोहरिकेशः सूर्या रश्मिस्तस्यारथकृत्सश्च रथौजाश्च सेनानी ग्रामन्यौ पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला चात्सरसौ दङ्ष्णवः पशवो हेतिः पौरुषे।

0: अयमुपर्यर्वाग्वासुस्तस्यासेनजिच्चासुषेनश्च सेनानी ग्रामन्यौ
1: उर्वशी च पूर्वचित्तिश्च।

यज्ञस्य रजा सश्चनेता यत्रा नियुद्धिः सचासे शिवाभिः दिवि मूर्धानन्दधिषे स्वर्षाञ्जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम् अबोध्यग्निः समिधा जनानाम् प्रतिधेनुमीवायति मुशासम् यह्वा इव प्रवया मुज्जिहानाः प्रभानवसिस्रते नाकमच्छा अवोचामकवये मेध्यायवचो वन्दारुवृषभाय वृष्णे गविष्ठिरो नमासास्तो मामग्नौ दिवि इव रुक्ममु रुव्यञ्चामश्रेत् अयमिह प्राथमोधायि धातृभिर्होता यजि

0: सोवाजिन इषग्स्तोतृभ्य आभार सो अग्निर्यो वसुर्गृणे संयमायन्ते धेनवः समर्वन्तो रघुद्रुवः सज्ञे सुजातासः सूरय इषग्स्तोतृभ्य आभार
1: उभेसुश्चन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीनीश आसने
0: उतो न उत्पूपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषग्स्तोतृभ्य आभार अग्नेतमद्याश्वन्नस्तोमैः क्रतुन्न भद्रज्ञ हृदि स्पृशम् हृध्यामात ओहैः अधाह्यग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्ष

0: நமசிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நமசிவாய.
1: ஓம் நமசிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் .org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் presented by Swami Sri Atmanand Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: बेटी जवान हुई थी तो उसकी पत्नी ने कहा, अब तो बेटी जवान हो गई, शादी करना चाहिए, इसका कोई लड़का खोज के शादी करा देना चाहिए. उस लड़की के बाप ने कहा कि महात्मा ने कहा है मिथ्या है, तो क्या शादी कराना है? हिसाब खत्म हो गए. महात्मा ने सारी समस्या का समाधान कर दिया. बेटी मिथ्या है तो क्या शादी कराना है भाई? तूने नहीं सुना वेदांत में? महात्मा ने कथा में नहीं सुनाया? बोले सुना तो मैंने भी है, तो फिर क्यों सोच रही है? मिथ्या है, मिथ्या का क्या शादी कराना है? निश्चिंत होकर बैठ जा, मिथ्या क्या शादी कराना है? लेव जी दूसरे आ गए. अरे भाई तुम्हारी बेटी जवान हो रही है, शादी कराओ. बोले महात्मा ने कह दिया है कि सब मिथ्या है, नाम और रूप मिथ्या है. नाम इसका शकुंतला, रूप इसकी मोटी पतली काली गोरी है, मिथ्या, दोनों मिथ्या है, फिर क्या शादी कराना है? तो एक दिन किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ वो भाग गई. अब घर छोड़कर भाग गई तो सब रोने लग गए. दोनों बैठ के रोने, भाग गई है तो क्या हो गया? मेरे बेटी तो भाग गई. तो सब लोगों ने कहा कि शादी समय में करा देना था, क्यों नहीं कराया? बोले महात्मा ने कह दिया था मिथ्या है, तो हम भी इस निश्चय में बैठ गए मिथ्या है. अब वो तो भाग गई, सचमुच में भाग गई. हमने सोचा था मिथ्या है, वो तो सचमुच में भाग गई, अब क्या करें? अरे मूर्ख, महात्मा ने बेटी मिथ्या है कहा था, उस बेटी की शादी सत्य है ये तो नहीं कहा था ना? बेटी मिथ्या है तो बेटी की शादी भी मिथ्या है, और जिससे उसको शादी होना है वो बेटा भी मिथ्या है, लड़का भी मिथ्या है. तो मिथ्या लड़की, मिथ्या लड़का, मिथ्या लड़की लड़के का मिथ्या शादी, मिथ्या करा दो. तो मिथ्या मिथ्या मिथ्या सब कुछ ठीक हो जाएगा कि नहीं, बोलो? है तुम बेटी को मिथ्या मानना और शादी को सत्य मानना, लेकिन ये कहां का नियम है भाई? भोजन को मिथ्या मानना, भूख को सत्य मानना. भोजन मिथ्या है, भूख भी मिथ्या है, तो भूत मिथ्या भोजन के द्वारा मिथ्या भूख की निवृत्ति के लिए मिथ्या भोजन मिथ्या ग्रहण करो, रिजल्ट सब सामने आएगा, ठीक आएगा. तो हम तो यही कहते हैं कि मिथ्या प्लस मिथ्या. तो महात्मा सब कुछ मिथ्या करते हुए करते हैं. महात्मा ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारा दिया हुआ दक्षिणा ये मिथ्या करके फेंक के नहीं चलते. क्या करते हैं? तुम्हारा द्वारा दिया गया नोट भी मिथ्या, हमारे द्वारा लेना भी मिथ्या, मिथ्या प्लस मिथ्या हो गया कि नहीं, बोलो? है तुम्हारे द्वारा देना भी मिथ्या, नोट भी मिथ्या, हमारे द्वारा लेना भी मिथ्या, और उसको ले जाकर बैंक में रखना भी मिथ्या, बैंक भी मिथ्या, मिथ्या मिथ्या मिथ्या मिथ्या मिथ्या, सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, बोलो? मिथ्या है करके सड़क में फेंक दोगे तो तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा? मिथ्या होने पर भी मिथ्या बैंक में रखना पड़ेगा, मिथ्या होने पर भी मिथ्या साइन करना पड़ेगा, मिथ्या साइन से मिथ्या नोट मिलेगा आपको, और वही मिथ्या नोट ले जाकर मिथ्या फ्लैट खरीदो, मिथ्या फ्लैट में मिथ्या बैठ जाओ, सारा जगत मिथ्या, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, बोलो? और घर मिथ्या करके किसी के घर में घुस जाओ, ये घर तो मिथ्या है, घुस जाओ तो फिर लकड़ी डंडा पड़ेगा, फिर उसको भी मिथ्या मानने की हिम्मत करो, और जब डंडा पड़े तो कहो ये कैसे हो गया भाई, मिथ्या घर में, डंडा सत्य, डंडा भी मिथ्या, तब फिर जन्म मिथ्या, जीवन मिथ्या, तो मृत्यु मिथ्या, तो रिजल्ट सही आता है, रिजल्ट में गलत नहीं है. आज समझ गए कि नहीं? पुलिस वाले क्या करते हैं, कोई अपराधी को पकड़ना होता है तो स्केच बना देते हैं उसके आकार प्रकार के, और फोटो छाप देते हैं। ये व्यक्ति किसी को कहीं मिले तो सूचना करना, 1,00,000 रुपया पुरस्कार मिलेगा। अब पेपर में जो छापा है फोटो हो, वो कहीं सही व्यक्ति है वो ना, मिथ्या है कि नहीं वो? और कोई वही कटिंग को लेके जाए, ये मिल गया मुझे, ले उसे 1,00,000 रुपया, तो वो देगा नहीं देगा? मिथ्या होने पर भी वह सत्य अपराधी को प्राप्त कराने में हेतु बनेगा कि नहीं? सारा जगत मिथ्या है, जीवन मिथ्या है, जन्म मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या होने पर भी इन मिथ्याओं के बीच में एक सत्य वस्तु छुपा हुआ है, जिसका तुम अनुसंधान करोगे तो फिर वो सत्य वस्तु प्रगट हो जाएगा। और क्योंकि मिथ्या को ही सत्य मान लोगे तो सत्य फिर ढका रह जाएगा। कई बार हमसे यही तो हो रहा है ना, मिथ्या को ही सत्य मान रहे हैं इसलिए सत्य ढक गया, और मिथ्या को बिल्कुल मिथ्या मानेंगे तो सत्य प्रकट होगा। सर्प को ही सत्य मान लेंगे तो रस्सी कभी भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। सर्प को ही सत्य मानते रहोगे तो रस्सी तुम्हें कभी मिलेगा? तुम्हारी हिम्मत होगी ये रस्सी एक करके पकड़ने की? बोलो, सत्य छुप गया, जबकि सत्य उस सर्प से भिन्न नहीं है, रस्सी उस सर्प से भिन्न नहीं है, परंतु मिथ्या सर्प को तुमने सत्य मान लेने के कारण, उस मिथ्या को सत्य मानने के कारण सत्य रस्सी ढक गया, परोक्ष हो गया, और तुमको 3 काल में सत्य रस्सी मिलेगा ही नहीं। रस्सी खोदते जाओ, चलोगे इधर भी रस्सी खोजोगे, उधर भी रस्सी खोजोगे, रस्सी पड़ी हुई सामने, उसको तुम सर्प मान रहे हो और सत्य मान रहे हो, तो सर्प सत्य मानोगे तो हिम्मत होगा उसको उठाने का? सर्प को सत्य मान लिया तो उसके नजदीक जाने का ही हिम्मत नहीं होगा, और परिणाम क्या हुआ? मिथ्या वस्तु को सत्य मानने का परिणाम क्या हुआ? सत्य वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं हो रहा, रस्सी कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी वहां जाने की, डरते रहोगे। कितनी जन्म में, हर जन्म में तुम यही कर रहे हो। मिथ्या सर्प को तुम सत्य मान रहे हो, परिणाम क्या हुआ कि सत्य रस्सी तुमको कभी भी नहीं मिल रहा है। मिथ्या जगत को तुम सत्य मान रहे हो तो परिणाम क्या हो रहा है कि इसका अधिष्ठान सत्य ब्रह्म कभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है, मिथ्या शरीर को ही सत्य मानते जा रहे हो तो जिस अधिष्ठान में यह मिथ्या शरीर प्रतीत हो रहा है वो सत्य वस्तु हमेशा परोक्ष हो रहा है, अपरोक्ष होता ही नहीं है। शरीर मिथ्या है, मिथ्या ही निश्चय कर दोगे तो तुम फिर ये निश्चय करोगे कि शरीर मिथ्या है तो फिर सत्य क्या है? शरीर मिथ्या है तो इसके प्रति मोह खत्म हो जाएगी। सर्प मिथ्या है ये निश्चय हो जाएगा तो उसके प्रति होने वाला जो डर और भय है वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो जो सर्प है वो मिथ्या है तो तुम हिम्मत करके वहां पहुंच जाओगे, मिथ्या है तो फिर मेरा क्या बिगाड़ेगा, तो हिम्मत करके जाओगे तो मिलेगा क्या तुमको? बोलो, रस्सी प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं? ये जगत को मिथ्या है करके पकड़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ब्रह्म मिलेगा, सत्य मिलेगा। और जगत को सत्य करके मानोगे तो फिर ब्रह्म सत्य नहीं मिलता, दो सत्य हो नहीं सकते बाबा। हमारे सामने यही तो समस्या है, एक तो हम ये मान रहे हैं पूरी जन्म जन्मांतर के संस्कार को लेकर जगत बिल्कुल सत्य है, और साथ साथ ही हम ये भी चाह रहे हैं कि महात्माओं के द्वारा, उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म सत्य है वो भी मुझे मिलना चाहिए, और जो जगत सत्य है वो भी मुझे मिलना चाहिए। और जब होगा नहीं बाबा, दो सत्य तुमको एक साथ कहां मिलेगा? जगत सत्य है तो इसी में संतोष कर लो, पैदा होता है तो पैदा हो, मरता है तो मरो, और क्या? तब तो फिर रोने को भी सत्य मान लो, हंसने को भी सत्य मान लो। महात्मा क्या कहते हैं? हंसने को भी मिथ्या, पैदा होने को भी मिथ्या, हंसने को भी मिथ्या, मरने को भी मिथ्या, तो रोने को भी मिथ्या। लो जी, सिनेमा का एक्टर क्या करते हैं? मिथ्या प्लस मिथ्या इजकल टू सत्य मिथ्या, पैसा उनको पूरा मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? स्टेज में जो पत्नी होती है मिथ्या पत्नी होती है कि नहीं? हीरोइन, और वो हीरो आता है, वो शादी करता है, क्या सत्य शादी करते हैं कि मिथ्या शादी करते हैं? मिथ्या शादी करते हैं। तो उसका पति भी मिथ्या होता है, उसकी पत्नी भी मिथ्या होती होती है कि नहीं, बोलो दोनों मिथ्या होते हैं कि नहीं। और उसके बाद उसकी पत्नी मर जाती है तो कौन मर गया है? मिथ्या पत्नी मर रही है। और वो जो हीरो रोता है मेरी पत्नी मर गई करके, वो क्या सत्य रोता है कि मिथ्या रोता है? बोलो ना मुझे, जवाब दो, मिथ्या रोता है कि नहीं? सत्य रोता है वो? आप लोगों की तरह रोता है वो? है मिथ्या रोता है कि नहीं? है मिथ्या रोता है। अब फिर दूसरी शादी कर लेता है तो वो कौन सी होती है दूसरी भी? स्टेज में सब मिथ्या है ना, सत्य होता है वहां, सब कुछ ठीक हो रहा है। और उसके बाद उसको तनख्वाह मिलता है, तनख्वाह पक्का मिलता है कि नहीं, बोलो? ये सब मिथ्या करते करते तनख्वाह उसको जो पैसा है वो तो बिल्कुल सही मिल जाता है, हैं, लाखों रुपया मिल जाता है, सब कुछ मिथ्या पैसा। उसको ही सत्य मान लिया होता और जिस हीरोइन से उसने स्टेज में शादी की, जिस हीरो से शादी की, दोनों ही घर जाके घर बसा लिए होते तो किसी का प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में, फिल्मी उद्योग में फिल्म चलता, बोलो? तो कोई पैसा देता उनको है? हम तो शादी कर गया, ले जी खत्म हो गई बात। अब असली शादी किया था तो अभी ऐश्वर्या राय और अभिषेक दोनों एक ही स्टेज में रहते हैं, फिर पिक्चर बनाने लगते हैं, फिर दोबारे शादी करते हैं, तो वो दोबारे शादी जो करते हैं स्टेज में, सत्य करते हैं कि मिथ्या करते हैं? असली शादी तो पहले हो चुकी है, अब जो दूसरे शादी हो रही है, कितनी बार शादी करोगे कोई पूछेगा तो क्या कहेगा वो? अरे भाई असली तो एक ही बार है, ये तो फिर मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, सब कुछ ठीक चलता है। तो ये दो दृष्टि हमेशा रखना, एक जगत नाम रूप सब के सब मिथ्या हैं, तो मिथ्या शरीर है, मिथ्या साड़ी है, और मिथ्या पहन लो तो इज्जत बना रहेगा। शरीर मिथ्या है, साड़ी मिथ्या है, तो मिथ्या को मिथ्या साड़ी क्यों लगाना? वह नंगे चलोगे तो फिर है तो नंगा भी मिथ्या है, लेकिन सब पत्थर मारेंगे तो फिर तुम उस कहोगे कि अरे रे रे इसने तो मुझे मार डाला, हाँ तो फिर उसको भी मिथ्या मानो, फिर क्यों रहोगे उसमें? तो मिथ्या प्लस मिथ्या सब कुछ ठीक हो जाता है। तो महात्मा का हिसाब ये मिथ्या प्लस मिथ्या सब ठीक होता है, और हमारा हिसाब सत्य प्लस सत्य करने लगते हैं, सत्य प्लस सत्य इक्वल टू इतने दिन वेदांत सुनाया, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। सत्य के साथ सत्य का प्लस होता है, क्या सुन रहे हो वेदांत? सत्य दो होता तब न प्लस होता, सत्य तो एक है, एक सत्य के साथ प्लस की कल्पना तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? हैं? क्वेश्चन ही गलत हो गया, तुम ये क्यों नहीं कर सके? सत्य प्लस सत्य इक्वल टू ये क्यों नहीं कर सके? पहले क्यों नहीं कहा ये बात? सत्य का कोई प्लस होता है? सत्य के साथ सत्य का प्लस नहीं होता, क्योंकि सत्य एक है, एक होने के कारण प्लस नहीं होता। और सत्य के साथ मिथ्या का प्लस नहीं होता, क्योंकि दोनों विरोधाभास है, इसलिए प्लस नहीं होता है। मिथ्या के साथ जितना प्लस करना है कर लो, हजार प्लस कर लो ना, मिथ्या प्लस मिथ्या प्लस मिथ्या प्लस मिथ्या प्लस मिथ्या प्लस, टेंथ प्लस कर लो, ट्वेल्थ प्लस कर लो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? क्योंकि मिथ्या अनेक हैं, इसलिए प्लस होता है। मिथ्या मिथ्या प्लस होता है, क्योंकि मिथ्या अनेक हैं, नाम रूप अनेक हैं, है कि नहीं? वेदांत तो समझ में आ रही है कि नहीं? नाम रूप अनेक हैं, और नाम रूप मिथ्या है, इसलिए अनेक नाम रूपों में मिथ्या प्लस आराम से हो सकता है, लेकिन सत्य का प्लस क्यों नहीं होता है? क्योंकि सत्य एक है, एक होने के कारण प्लस नहीं होता, और सत्य और मिथ्या का प्लस नहीं होता, क्योंकि सत्य और मिथ्या दोनों विरोधाभासी हैं, इसलिए प्लस नहीं होगा। तो प्लस होगा तो मिथ्या मिथ्या का ही होगा, तो जगत जगत का ही प्लस हो सकता है, जगत और ब्रह्म का प्लस नहीं हो सकता, ब्रह्म ब्रह्म का प्लस नहीं हो सकता है, बात समझ गए? और जगत का प्लस तो मिथ्या प्लस, चाहे हजार प्लस कर लो ना, तो हम कोशिश क्या करते हैं, मिथ्या के साथ सत्य को प्लस करने लग जाते हैं। शरीर मिथ्या, आत्मा सत्य, दोनों को प्लस करके मैं ठीक हूं, रिजल्ट गलत आ जाता है, क्योंकि होता ही नहीं। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो ये क्या हो गया भाई, ये प्लस का रिजल्ट कहां गया? शरीर तो नष्ट होना है, तो तुम्हारी गणित ही गलत है, तो कहां से रिजल्ट सही आएगा? महात्माओं का गणित सही है, इसीलिए शरीर नष्ट होता है, वो नहीं दो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथ्या प्लस मिथ्या इजकल टू मिथ्या, महामंडलेश्वर मिथ्या, लेव जी, मिथ्या महात्मा, मिथ्या शरीर, मिथ्या शरीर, मिथ्या चादर, मिथ्या चादर, मिथ्या उड़ाया, महामंडलेश्वर मिथ्या, लेव जी, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां। सब जगह फर्क पड़ेगा, यहां कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, चादर उड़ाओ चाहे ना उड़ाओ, मंडलेश्वर बनाओ चाहे कमंडलेश्वर बनाओ, यहां कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। मिथ्या प्लस मिथ्या, आराम से जगत व्यवहार चलता है। तो यहां बता रहे थे आठवें श्लोक में, स्वप्ने जागृति वा ययेश पुरुषो माया परिभ्रामित तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। ये सब माया ने भ्रमित कर रखा है। तब ये जिज्ञासा हुई स्वतः कि ये माया का भ्रम से हम कैसे निकलेंगे। आठवें श्लोक में माया के भ्रम में पड़ा हुआ है ये जो कहा गया, तो माया के भ्रम से हम कैसे निकलें बाहर? तो माया के भ्रम से निकलने के दो उपाय हैं। एक सबसे बढ़िया और उत्तम उपाय है ज्ञान साधना, ब्रह्म विचार, अध्यात्म विचार, ब्रह्म तत्व का, सत्य तत्व का अनुसंधान। जब तुम सत्य तत्व का, परम शिव का यथार्थ स्वरूप का अनुसंधान करने लग जाओगे, तब ये माया से तुम निकल जाओगे। और यदि ब्रह्म विचार नहीं कर सकते हो, परमात्मा के तत्व यथार्थ तत्व का विचार नहीं कर सकते हो, तो फिर दूसरा उपाय है, जिस परमात्मा की ये माया है उसी की उपासना करो, उसी से प्रार्थना करो कि महाराज मैं आपकी इस माया को हटा नहीं पा रहा हूं, आप ही अपनी माया को हटा दो। ये दो उपाय हैं। परमात्मा की कृपा हो जावे तो माया हट सकती है, और व्यक्ति खुद विचार करने लग जावे तो माया हट सकती है। खुद विचार करने लग जाएगा तो भी माया टिकेगी नहीं, लेकिन विचार किए बिना तुम अन्य साधनों से माया को हटाने लग जाओगे तो माया नहीं हटेगी। तो माया दो साधनों से हटती है, एक तो परमात्मा हटा में तो वो हट जाती है, और या फिर आप विचार करो तो विचार के सामने माया नहीं टिकती। तो क्या करें? तो फिर बोले उपासना करो उस परमात्मा की, जिसकी ये माया आपको फंसा रही है, घुमा रही है, भ्रमित कर रही है, उसी की उपासना करो। किस रूप में उपासना करें? तो यूं तो शैव सिद्धांत में विचार के लिए 36 तत्व स्वीकार किया है शैव दर्शन में। जगत इस 36 तत्वों का सम्मेलन है, यानी संघात है ये जगत, मूल रूप में 36 तत्व मानते हैं शैव दर्शन। शिव पुराण में भी है और शैव काश्मीरी दर्शन में भी इसकी चर्चा है। जैसे सांख्यों ने 25 तत्व माना, शैवों ने 36 तत्व माना, नैयायिकों ने सप्त पदार्थ माना, चार्वाकियों ने एक ही वस्तु माना। प्रत्यक्ष जो दिखता है वही एक है, और मूल तत्व चार हैं, ये चार्वाकियों का है, पृथ्वी जल वायु, पृथ्वी तेज जल वायु, ये चार तत्व हैं। इसी का सारा खेल जगत है। आकाश वो मानते नहीं, क्योंकि आकाश अमूर्त है, सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, इसलिए आकाश को तत्व नहीं मानते। बाकी यही चार पदार्थों का ही सारा जगत है, जीव भी, जगत भी, भोग्य भी, भोक्ता भी, कर्म भी, क्रिया भी, सब इसी के अंतर्गत आता है। उन सब में से शैव दर्शन में प्रत्यक्ष दिखते हुए भगवान के ये आठ मूर्ति हैं। उन आठ मूर्तियों के बारे में ही तुम भगवान शिव के रूप में ही उपासना करोगे तो उस उपासना के फलीभूत होकर माया भगवान शिव की कृपा से, अष्टमूर्ति भगवान शिव की कृपा से माया छोड़ देगी, हट जाएगी, माया का पर्दा हट जाएगा, तो भगवान शिव अपरोक्ष हो जाएंगे। यानी आत्मा अपरोक्ष है, शिव का अर्थ कोई दूसरा नहीं समझ लेना आप वेदांत में। हाँ, यथार्थ सत्य वस्तु प्रकट हो जाएगा। तो भगवान शिव के ये अष्टमूर्ति बड़ा प्रसिद्ध है, तो यह अष्टमूर्ति का स्मरण किया, यह उपासना के लिए। हालांकि शिव एक ही है, एक ही होने पर भी भावना से प्रतीको उपासना है, ये प्रतीको उपासना के लिए ये सब बात कही गई है।

சராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் நான்யத் கிஞ்சன வித்யதே விமிர்ஷதாம் யஸ்மாத் பரஸ்மாத் விபோ தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணா மூர்த்தயே பூமி பூ. ஏ ஜோ பிருத்வி ஹே யே பகவான் சிவ கா ஹி ஸ்வரூப் ஹே. சிவ ஹி ஹே யே. க்யோன்கி பூகோல் சாயன்ஸ் பி க்யா கஹதா ஹே பிருத்வி கோ கோல் மன்தா ஹே கி நஹி. ஔர் பகவான் சிவலிங்க கைசா ஹோதா ஹே கோல் மடோல். யே பிருத்வி பூரா கா பூரா சிவலிங்க ஹே. துமாரே மந்திர மே ரக்கா ஹுவா சோட்டா ஹே ये बहुत बड़ा है. और शिवलिंग के ऊपर कभी कभी चींटी चढ़ती है, देखा है कि नहीं? हाँ, देखा है कि नहीं? और आप और हम उस शिवलिंग के ऊपर ही भगवान शिव के प्रसाद खाने के लिए घूम रहे हैं. हाँ, क्योंकि पूरा पृथ्वी शिवलिंग है तो इसके ऊपर विचरण करने वाले हम जीव समूह क्या है? वही शिव प्रसाद खाने के लिए. क्योंकि पृथ्वी से ही निकलता हुआ गांव है, पृथ्वी से निकल रहा है कैरी, वो सब क्या है? शिव प्रसाद है कि नहीं? इसको ठीक से भोगोगे तो तुम्हारे प्रसाद हो जाएगा, और यदि ठीक से इस बुद्धि से नहीं भोगोगे तो वह फिर भोग होगा, और वो भोग तुम्हारे लिए रोग होगा, और वो रोग वियोग का कारण बनकर फिर शोक में परिणत हो जाएगा. कब? पृथ्वी को पूरा का पूरा शिव और पृथ्वी से प्राप्त होने वाले पदार्थों को शिव प्रसाद मानोगे तो शिव प्रसाद को तो कोई दुरुपयोग करता नहीं है. करता है, दुरुपयोग नहीं करेगा तो सदुपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा तो प्रसाद होगा, भोग नहीं होगा. भोग और विलास नहीं होगा. भोग विलास नहीं होगा तो क्या होगा? रोग नहीं होगा. रोग नहीं होगा तो वियोग नहीं होगा. वियोग नहीं होगा तो शोक नहीं होगा. ये देख लो तो सारा पृथ्वी शिव है. इसी के रूप में उपासना करो तो ये उपासना परिपक्व हो तो भगवान शिव अपनी माया को हटा देते हैं इस बुद्धि से. अंभांसी दूसरा है जल. ये जल ही पृथ्वी माने शिव है. शिव का रूप है जल. भूरंभांस अनल अग्नि. अग्नि भी भगवान शिव का स्वरूप है. अनिल वायु. अंबर आकाश. हिमांशु अहरनाथ. अहरनाथ माने सूर्य, दिन का स्वामी. अहरनाथ हिमांशु चंद्रमा. पुमान जीवात्मा. इत्यावाति ये आठ शिव जी के मूर्ति हैं, अष्ट मूर्ति हैं. कालिदास जी ने शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतल में पहले मंगलाचरण में ही अष्ट मूर्ति का स्मरण किया है. और वेद ने इन्हीं अष्ट मूर्तियों को इस तरह माना है. ओम सर्वाय चितिमूर्तये नमः. सर्वाय सर्वरूप. सर्वाय चितिमूर्त भव सर्वो रुद्र पथुपति महान. ये पुष्पदंताचार्य जी ने भी शिव महिमन स्तोत्र में ये अष्टमूर्ति का ही स्मरण किया है. कालिदास ने भी अष्टमूर्ति का स्मरण किया उपासना के लिए. और यहां शंकराचार्य जी ने दक्षिणामूर्ति में भी उसी भगवान शिव के अष्टमूर्ति का स्मरण किया है. ओम सर्वाय चितिमूर्तये नमः. ओम भवाय जलमूर्तये नमः. ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः. ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः. ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः. ओम

0: सूर्य को भगवान शिव ईशान के रूप में है, भगवान शिव का है ना, बाबा सर्वो रुद्र पशुपति रथो मां रमहन। हाँ शिव तमरकस्तम सोमस तमसी पवनस्तम हुतवहा तमापस्तम व्योमा तम धरणिरात्मा तमिति च परिच्छिन्नामेवम त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम नबीद मस्त तत्त्वम वयमियतु यत्त्वम नभवसि। हे शिवा, मैं जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जान सकता, नहीं पा सकता जिसमें आप विद्यमान न हो, जो आप नहीं हो। ये माला क्या है? यही तो आप हैं। क्यों मैं हूं शिव? कैसे ये माला? क्योंकि पृथ्वी शिव रूप है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, यही तो शिव है। ये नबीद मस्त तत्त्वम, मैं तो इस जगत में तुम्हारे अलावा दूसरे किसी पदार्थों को जानता ही नहीं हूं। कंदवरार पुष्प दंताचार्य जी शिव महिमा स्तोत्र में कहते हैं, और वही बात यहां कह रहे हैं। इत्याभाति चरा चरात्मकम इदम यस्यैव मूर्ति अष्टकम, चर और अचर, व्यक्त और अव्यक्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष, स्थूल और सूक्ष्म, जो कुछ भी जगत है वो सब यही भगवान शिव के आठ मूर्तियों का संघात रूप है, मिला जुला स्वरूप है। नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम, और जब विचार करने लगते हो तो परमात्मा के अलावा जगत में कोई सिद्ध ही नहीं होता है। क्या सिद्ध होगा भाई? नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम, विचारकों के लिए शिव की सत्ता के अलावा और कुछ नहीं है। यस्मात् परस्मात् विभो हो तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। ऐसे अष्टमूर्ति सर्वव्यापक भगवान शिव को यह हमारा नमस्कार हो, और इस भक्ति से भी भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी माया का आवरण हटा देते हैं और शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। अब एक श्लोक है, वो कल पूरा करेंगे और कल अंतिम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Senyaniyar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankar Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi jis Dakshin Bharatiya Shiv Bhakt ya Sant ki kahani sunenge, inka naam Ishay Gyaniyar hai. भगवान के अनुग्रह से नंबियारों के नाम से भूलोक में सुंदर का जन्म हुआ। तपस्वी जन उनकी कीर्ति गाते हुए अगाते नहीं हैं। जब बालक नंबियारों गली में कीड़ा का रथ खींचकर खेलते, किलकारी मारते तथा डगमग डगमग चलते तो उनका सौंदर्य देखते ही बनता था। पैरों में मंजीरा, कमर में मेखला शोभायन तथा बाल्य सुलभ मुस्कान और उल्लास से वे विविध क्रीड़ाएं करते थे। इस बालक की माता का नाम ईशय ज्ञानियार था। एक बार राजा नरसिंह मुनियार ने नंबियारों को क्रीड़ाएं करते हुए देखा तो इनके अलौकिक रूप सौंदर्य और गुणों का अनुमान लगाकर वे बालक के माता पिता से मिले। उन्होंने बालक को अपने पुत्र मानकर पालन पोषण करने की उनसे अनुमति ले ली। कोई भी माता अपने गुण संपन्न पुत्र को सहज ढंग से किसी को देने को तैयार नहीं होगी और नंबियारों की मां ने बालक के राजभवन में पालन पोषण की स्वीकृति देकर अद्भुत त्याग किया है। इस पुण्यवती मां का नाम ईशय ज्ञानियार था। ईशय का अर्थ है संगीत। माना जाता है कि संगीत में विशिष्ट योग्यता से संपन्न होने के कारण इनका यह नाम प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं के प्रभाव से सुंदरर भी गायन विद्या में पारंगत हुए। अत्यंत कीर्तियुक्त चढ़ैनाथ की यह सहधर्मिणी ज्ञानी देवी ईशय ज्ञानियार की कीर्ति का गान करने में चक्रवर्ती भी स्वयं को असमर्थ मानते हैं। ये सुंदरमती नायनार की माँ के रूप में ईशय ज्ञानियार हैं और इन्हें भी 63 संतों में एक गिना जाता है। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
3: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: फूल भर के गिलास चाहिए और जब रस खानी होगी तो तुम्हें पूरा कटोरी भर के चाहिए। और तुम ईमानदारी से बोलो, भगवान को थाली धराने का कटोरी कितना बड़ा रखा है? ईमानदारी से बोलो मुझे, जितने बड़े कटोरी में तुम रस खाते हो क्या उतना ही बड़ा कटोरी है भगवान को थाली धराने के लिए? तो इतनी से कटोरी में एक चम्मच रस डालकर, एक तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाते हो, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा। जमवा आओ सुनती रबर श्यामलार। वाह, क्या मस्ती से गा देते हो तुम, थाल धराते हो। गुजराती लोग करते हैं? नहीं नहीं, क्या प्रार्थना करते हैं, क्या उससे उनका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। लेकिन तुम लोग कम होशियार नहीं हो। महाराज, भगवान तो एक है कि अनेक है? बोलो, भगवान तो एक है? सारी दुनिया का भगवान तो एक ही है ना। अब विचार करो, बंबई में कितने करोड़ की आबादी है? 100 करोड़ मान लो। 100 करोड़ तो इंडिया की है, 125 करोड़। 125 करोड़ बंबई की आबादी है। मान लो 125 करोड़ में से भी आधे भगवान को भोग लगाने वाले होंगे ना, होंगे कि नहीं? हैं? नहीं होंगे, आधे भी नहीं होंगे थाली धराने वाले। चलो 1/3 तो होगा ना। हैं? 25 भी नहीं होगा? 25 करोड़ भी नहीं होंगे भगवान को थाली धराने वाले? नहीं होंगे। चलो 1 करोड़ तो होंगे ना। है जरूर एक करोड़ तो बम्बई में हो होंगे। मराठी भी भोग चारा धराते हैं भगवान के सामने, गुजराती मारवाड़ी सभी धराते हैं भाई। मान लो एक एक चम्मच सवा करोड़, क्या होगा? बड़ा भारी बाल्टी भर जाएगा। एक बाल्टी क्या, कितना भर जाएगा, कितना खाएगा वो एक भगवान? सभी लोग थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा देंगे, हैं? हजारों फूल में से मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा अपने चोंच में से लाती है, तो एक छत्ते में रखते रखते कितना होता है, 2-4 किलो हो जाता है, हैं? तुम कह सकते हो। इसलिए भगवान को तो सभी लोग खिलाते हैं, इसलिए उनका पेट भर जाएगा, ऐसी बात नहीं। तब क्यों अर्पण करना पड़ता है? तो भागवत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्ण। परमात्मा तो निज लाभ पूर्ण, अपने स्वरूप आनंद से आनंदित है। वह भक्तों के द्वारा अर्पित क्षुद्र और भौतिक पदार्थ की अपेक्षा वो नहीं रखेगा,

आत्मा उसके प्रतिबिंब है। चिदाभास परमात्मा चित स्वरूप है तो जीवात्मा चिदाभास स्वरूप है, इसलिए परमात्मा का प्रतिबिंब जीवात्मा है। और यदि कोई जीवात्मा बिंब को अर्पण करता है, प्रतिबिंब को स्वतः मिल जाता है। आप लोगों ने देखा हो, आप यदि किसी आईने के सामने, दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर की ललाट में तिलक नहीं होता, तिलक नहीं है मान लो। और आप यदि चाहो कि इतनी सुंदर है, एक तिलक ललाट में नहीं है, हाँ, यदि उसमें एक तिलक लगा दूं तो कितना सुंदर होगा। या इसने साड़ी तो खूब मैचिंग किया लेकिन कान में झुमके इसने नहीं लगाया, इसके कान में दो झुमके भी बढ़िया लगा दूं, तो क्या प्रतिबिंब के कान में झुमका लगा पाओगे है? या प्रतिबिंब के ललाट में तिलक लगा पाओगे? प्रतिबिंब को श्रृंगार करना होगा तो किसका श्रृंगार करोगे? प्रतिबिंब का। और यदि तुमने बिंब का श्रृंगार कर दी, प्रतिबिंब सुंदर स्वतः सुंदर होगा कि नहीं है? बिंब का श्रृंगार कर लिया तो प्रतिबिंब स्वतः ही सुंदर हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा को अर्पण करने का मतलब यह है कि परमात्मा को अर्पण करने के बाद परमात्मा को जो प्राप्त होगा, परमात्मा की को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वह स्वतः ही जीवात्मा को अपने आप प्राप्त होगा, तभी तुम परमात्मा को अर्पण करते हो। यह भागवत का सिद्धांत है, तुम्हें करना जरूरी है, हाँ, क्योंकि तुम्हें उसका फल प्राप्त होना है। देखो, हमारे श्रद्धेय गुरु महाराज थे तो प्रश्न हुआ, महाराज जी का शरीर 85 में, इतनी 85 वर्ष की उम्र में शरीर, पंचभूतक शरीर नष्ट हुआ और वो निमित्त बन गया जबड़े का कैंसर, निमित्त बन गया। वो कोई भी निमित्त बन सकता है शरीर जाने के लिए, बहाना खोजता है वो शरीर, हाँ, जब जाना होगा इसको तो ये हजार बहाना खोजेगा, उसके एक बहाने को बंद करो दूसरा बहाना खोजेगा, दूसरा बंद करो तीसरा बहाना खोजेगा और उसी को निमित्त बनाकर जाएगा वो, तो बना के जाए। तो महाराज जी का अंतम स्थिति थी शरीर का, फिर भी सुबह 9 बजे महाराज जी ने प्रवचन किया और 10:30 बजे शरीर खत्म हो गए। बिस्तर में लेटे लेटे भक्त लोग गए दर्शन करने, प्रश्न किया, महाराज जी के परम शिष्य थे, माता जी थी, उनने प्रश्न किया, महाराज आप जैसे इतने महान संतों को इस तरह का कष्ट क्यों होता है? इससे अच्छा तो महाराज ये आजकल की जो बीमारी है वो सबसे अच्छी है। कौन सी बीमारी? तुम लोग समझते तो बहुत हो, वो सबसे अच्छी है। अटैक आया फट गया, किसी कहीं बिस्तर में नहीं पड़ना, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं, तुरंत एक झटका लगा गया, बस आ किया हा हो गया, वो सबसे अच्छी है। लंबे बीमार होकर पड़े रहे, सभी लोग हैरान हों परेशान हों, तो महाराज जी ने संक्षिप्त जवाब दिया है, तुम गलत कह रहे हो। लंबे बीमार यदि होते हैं कोई, उसका फल उनकी सेवा करने वालों को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। क्या होता है बोलो? ये दृष्टि आज के युवाओं को समझना जरूरी है। उनकी कहां दृष्टि है? वो माता पिताओं के प्रति ये दृष्टि होना बहुत जरूरी है, ये भाव है नहीं आज के जनरेशन में। महाराज जी ने जवाब दिया, मान लो कि कोई मां कोई बाप लंबे बीमारी पड़ा हुआ बीमार और उसका बेटा या बहू उसकी सेवा कर रही है, कर रहे हैं, उनको सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, बाप के मरने के बाद, मां के मरने के बाद उसके नाम के धन और संपत्ति जो है वो तो प्राप्त होगा ही।

0: होगा? किसको? सेवा करने वाले को। साथ में लंबे समय तक सेवा करने का पुण्य भी प्राप्त होगा। लेकिन जो ऑन द स्पॉट जो हार्ट अटैक से मर गए, वो बड़े अन्याय कर रहे हैं। किसके प्रति? किसके प्रति? अपने बहू बेटों के प्रति। भौतिक संपत्ति तो वो छोड़कर जा रहे हैं, देके जा रहे हैं, लेकिन उनको पुण्य का अवसर नहीं दिया उन्होंने। ये बड़ा अन्याय है। ये दृष्टि रखनी चाहिए वृद्धों की सेवा करते समय, माता पिता की सेवा करते समय, गुरु की सेवा करते समय। फायदा किसको है? हाँ? मेरी मां तत्काल नहीं मरी, मुझे सेवा करना पड़ रहा है, उसका धन जो होगा वो तो मुझे मिलेगा, साथ मुझे जो पुण्य मिलेगा। धन ये लोक के लिए होगा, पुण्य परलोक के लिए हो जाएगा। बड़ी कृपा कर रही है। ये भाव जब तक नहीं बनेगा तब तक सेवा में प्रवृत्ति रुचि नहीं बढ़ेगी। महाराज जी ने कहा वो अन्याय कर रहे हैं जो तुरंत मरते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं? आप लोगों को अन्याय करते हैं। उन्होंने अपने बहु बेटों को, अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को सेवा करने का अवसर नहीं दिया, और सेवा करने का अवसर प्रदान न करना, बोलो अन्याय है कि नहीं? पुण्य से वंचित हो गए कि नहीं? बोलो है। अब माता पिता गुरु आदि जो बीमार हो रहे हैं उनको अपेक्षा है कि नहीं? मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मेरी बहू मेरी सेवा करे, उनको जरूरत है कि नहीं? अपेक्षा है कि नहीं? इस पर मत जाओ। लेकिन बहु बेटों को यह अपेक्षा है कि नहीं कि मुझे पुण्य मिले? तो सेवा करनी चाहिए। किसकी? अपने पुण्य के अवसर प्राप्त हो रहा है, यह तो गौरव की बात है भाई। धन तो मिल रहा है, मिल रहा है, पुण्य भी मिल रहा है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि महाराज क्षुद्र फल देने वाले तो बहुत हैं संसार में, हाँ? लेकिन उन क्षुद्र फल देने वालों की मैं न सेवा करूंगा, न उनकी स्तुति करूंगा, न भजन करूंगा, न गुणगान करूंगा, न उनके आश्रय में मैं जाऊंगा। मैं तो आपके ही सेवा की अपेक्षा रखता हूं। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदा न मन्ने स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृत फलम्। हाँ, श्री सूक्त का पाठ करो तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी, तो तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। होगी कि नहीं? लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो लक्ष्मी देगी वो, हाँ? कुबेर की स्तुति करो, इंद्र के लिए यज्ञ करो, इंद्र प्रसन्न होगा तो सब कुछ दे सकता है। लेकिन हे शिवा, हमको ये पता है आपके महिमा के सामने इंद्र तो क्षुद्र है, कुछ भी नहीं है इंद्र, हाँ? वो भी आपकी सेवा करता रहता, आपके सेवा के लिए वो भी तड़पता रहता है। उसके क्या महानता है भाई? सारी दुनिया के जो बड़े से बड़े हैं देवता, विबुधा देवता, वे सब बहुत हैं। जरा सा प्रशंसा कर दो, उनकी स्तुति गान कर दो, प्रसन्न होकर बहुत देने वाले हैं वो। अरे भूत प्रेत भी देते हैं वो, हा? यूं तो खाली देवता नहीं, भूत प्रेत भी देते हैं। वो खुश हो जाए तो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ क्या होगा? क्षुद्र ही तो होंगे वो, क्षुद्र फलदा। आप लोगों ने शिव पुराण सुनी होगी। शिव पुराण में भगवान शिव का एक परम भक्त का नाम आता है, उपमन्यु। शिव पुराण में उपमन्यु की शिव भक्ति का इतना सुंदर वर्णन है। उपमन्यु बालक है। अब आप लोग अन्यथा नहीं लेना, कोई वैष्णव हो तो नाराज हो जाओगे, नाराज नहीं होना। उस शिवपुराण को प्रमाण नहीं मानते, भागवत को प्रमाण मानते हैं। समझे कि नहीं। जबकि शिवपुराण वेद अभ्यास जी की, भागवत भी वेद अभ्यास जी की कहते तो है ना, लेकिन श्रीमद् भागवत ने जो कहा वो उसको तो प्रमाण मानेंगे, अन्य पुराणों ने जो कहा उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। लेकिन शिवपुराण में स्पष्ट लिखा है भगवान कृष्ण के शिव मंत्र के दीक्षा गुरु उपमन्यु है। भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से शिव मंत्र पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली है, सीधा शिवपुराण में लिखा है, पढ़ लो। उपमन्यु इतने महान शिव भक्त थे, लेकिन जब हम ये कहते हैं तो वो लोग नहीं मानते। भागवत में लिखा हो तो बोलो, शिवपुराण की बात हम नहीं मानेंगे। भगवान कहीं उपमन्यु से दीक्षा लेगा? अरे भाई ये तो ईश्वर की लीला है, वो क्या क्या नहीं लेगा। गोपिनियों से जब मक्खन लेता है तो उपमन्यु से दीक्षा लेने में क्या अर्ज है बोलो? गोपिनियों से छाछ लेता है, गोपियों से छाछ लिया कि नहीं? वो भी नाच नाच कर लिया है, खूब नाच दिखाया, तब एक गिलास छाछ दी, चले गए, आहा क्या आनंद आ गया है। लियो जी, साहित्यकारों ने ये चर्चा किया है कि नहीं बोलो? भगवान श्री कृष्ण की लीला में चोरी चोरी करके खाना पड़ रहा है, चोरी कर करके खाना पड़ रहा है कि नहीं? मक्खन तुम लोग जो भोग लगाते इतना देते हो उससे पेट भरता नहीं है, तो फिर चोरी करके खाते हैं। भोग लगाते समय इतना थाल भर भर के लगा देते तो उनको चोरी करना ना पड़ता, और तुम थोड़ा थोड़ा लगा देते पेट भरता नहीं तो फिर चोरी करते हो, और क्या करेंगे। उपमन्यु की कथा आती है शिवपुराण। भगवान शिव के परम भक्त थे, तपस्या, शिवजी के साक्षात्कार के लिए उन्होंने बड़ा भारी तपस्या की। बालक थे 5 साल के, उपमन्यु का उम्र 5 वर्ष का था, जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव और जैसे उपमन्यु, जैसे नचिकेता। हाँ देखो, बूढ़े होने पर बिगड़ जाते हो। हाँ हमारे हिंदी भाषा में तो ये कहते हैं कि साठी हुआ कि सठी आ गया, बूढ़े होने पर और बिगड़ जाते हैं। बेचारे बालक को जो भक्ति लग जाएगी, बूढ़ों को इतनी जल्दी भक्ति नहीं लगती है। सारे प्रमाण तो यही है ना, शास्त्र में भरे पड़े हैं। बच्चों के भगवत भक्ति का उदाहरण तो कई है पुराणों में। भगवान शिव के अनन्य भक्ति करते थे उपमन्यु, तो उनके खाना पीना सब छोड़ दिया, तो उनके तपस्या के चलते पृथ्वी में डगमगाने लग गया। कैलाश में बैठे थे भगवान शिव, तो वो ऐसा लगा कि भूचाल आ रहा है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तो उपमन्यु तपस्या कर रहा, खाना पीना छोड़ दिया, प्राण को रोध कर दिया, निरोध कर दिया, व्यष्टि वायु समष्टि में जाकर धारणा कर दी, और धारणा समष्टि वायु को ही उन्होंने रुद्ध कर दिया, तो बस हाहाकार। किस लिए? बोले आपके दर्शन की अभिलाषा से उपमन्यु तपस्या कर रहा है। बोले वो मेरी अभिलाषा रखता है कि कोई और वस्तु रचाता है, है? जाके परीक्षा करते हैं। पुराण में उल्लेख आया है कि भगवान शिव इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ के जहां उपमन्यु तपस्या कर रहे थे वहां पहुंच गए, और उसको संबोधन किया, ए बेटा तुम इतना कठोर तपस्या कर रहे हो किस लिए? उपमन्यु ने कहा मैं शिव के साक्षात दर्शन करने के लिए तपस्या कर रहा हूं। तो इंद्र ने कहा, यानी शिव ने कहा, इंद्र का रूप धारण करके आया था, उन्होंने कहा बेटा इंद्र की तपस्या क्यों, माने शिव की तपस्या क्यों करते हो? क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। अमंगल्यम शीलम, मैमनी स्तोत्र में आया ना, श्मशाने स्वाक क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सा चरा चिता भस्मा लेपो स्वर्ग बनिर करोटी परिकर अमंगल्यम शीलम। मैं स्वर्ग का साक्षात राजा हूं इंद्र, देख ले ऐरावत हाथी, देख ले वैजयंती माला, ये देख मैं स्वर्ग का राजा, तुझे जो चाहिए मैं तुमको दे दूंगा, तेरे सारे मनोरथ पूरा कर सकता हूं मैं। उस फक्कड़ जोगी की क्या तू भक्ति करता है, छोड़ दे उसकी भक्ति, कुछ भी नहीं है उसके पास, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कुल, न गोत्र। तू तो ब्राह्मण है ना बेटा? बोले हां मैं तो ब्राह्मण हूं, और शिव तो कुल गोत्र का मालूम ही नहीं है, खानदान क्या है, हैं? किस गोत्र के हैं शिव जी, किस कुल के हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है वो? और लगता है उनके आचरणों से तो वो तो परम शूद्र हैं। लेकिन पुष्पदंताचार्य जी ने एक बात कह दी है, कोई भक्त भगवान का आचरण अमंगलमय है इतने रूप में स्मरण करता है तो भी उसका मंगल हो जाता है। देख लो, भगवान शिव का आचरण शूद्र जैसा है, इतने यदि आचरण स्मरण करता है तो भी उसका परम मंगल हो जाता है। स्मर्त्री नाम परम मंगलमसी। हाँ, तो बड़ी निंदा कर दी भगवान शिव की। उपमन्यु ने कहा कि देख इंद्र, तू यहां से चले जा, तो मेरे आराध्य देव की तू निंदा नहीं करना, और ज्यादा निंदा करता है तो मैं तुझे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो छोटा बालक हूं, तो शक्तिशाली है, समर्थ है, तुझे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शिव की तू यदि निंदा करता है, योग अग्नि से मैं अपने शरीर को ही जला के खत्म कर दूंगा। हाँ बोल, तो क्या चाहता है तेरे सामने, मैं अपने शरीर को योग अग्नि से जलाकर खत्म कर दूं, और या तेरी शिव निंदा को चुपचाप सुनता रहूं? वो हमसे नहीं होने वाला है, तो जाता है कि मैं शरीर को नष्ट कर दूं? बोल, मुझे शिव के अलावा और किसी से कुछ लेना नहीं है, तो क्या देगा? बोल, तेरे पास क्या है? तेरे पास जो है वो शिव भक्ति और भगवान शिव के अनन्य भक्ति के सामने क्षुद्र है, बस। क्षुद्र फलदा सहस्रम वर्तन्ते विबुधा, जगति विबुधा क्षुद्र फलदा न मन्ने स्वप्ने वा। तो जब उसने, उपमन्यु ने इंद्र के सामने इस प्रकार की बात कही, तो भगवान शिव को लगा कि ये तो अनन्य है, मेरे अलावा दूसरे के किसी की कामना नहीं। अनन्य शब्द का अर्थ वैष्णव लोग दूसरी बात करते हैं, अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, लेकिन अनन्य शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने दूसरे ढंग से किए। हां, अनन्य माने अद्वैत, वैष्णव लोग अद्वैत नहीं करते, अपने से भिन्न का अस्तित्व न होना वही अनन्य है। वैष्णव कहते हैं विष्णु के अलावा और किसी का भजन न करना वो अनन्य है, और हम वेदांती आदिगुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? न अन्य, अपने अलावा दूसरे का अस्तित्व ही नहीं, यानी ब्रह्म के अलावा, परमात्मा के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं, जीव भी केवल प्रातिभाषिक मात्र है, पारमार्थिक तो ब्रह्म ही है। पारमार्थिक में ब्रह्म के अलावा और किसी के सत्ता न होना, इसको क्या कहते हैं? अनन्य, न अन्य, ये अनन्य। दूसरा तो है ही नहीं, तो द्वैत कहां से आएगा भाई? अनन्य का अर्थ तो द्वैत का अभाव, ये एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ये देख लो मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद में एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, वहां दूसरा कहां से आएगा? अन्य होगा, अन्य भक्ति कहां से होगी? अनन्य, ऐसा अर्थ किया है वो शंकराचार्य जी ने। तो उपमन्यु ने देखा कि ये मेरे अलावा और किसी को भजता नहीं है, नहीं तो जीवन ही खत्म करने को तैयार हो गया, देख लो। तो तुरंत भगवान शिव ने उनका जो ऐरावत हाथी था इंद्र का, वो तो उपमन्यु के देखते देखते वृषभ हो गया। क्या हो गया, वृषभ का रूप धारण कर लिया। और जो इंद्र का रूप सामने खड़ा था, देखते देखते साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। बेटा हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुमको क्या चाहिए बोलो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? तो उपमन्यु ने कहा कि मेरे और कोई अभिलाषा नहीं, आपके चरण की सेवा बायक और मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। क्योंकि एक नीति है, नीतिकारों ने कहा सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्न, हाथी का पांव जहां पड़ा हुआ हो उसके अंदर सभी जीव जंतुओं का पांव आ जाएगा, आएगा कि नहीं? भगवान के चरण के अंदर तो सब कुछ आ गया, चरण पकड़ लिया तो सब हो गया। देखो पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, सारा तीनों लोग चतुर्भुवन का सब कुछ भगवान शिव के एक चरण में है, और हमको तो दो चरणों की सेवा करने को मिल रहा है, अब क्या चाहिए बोलो? है कामधेनु गाय यदि जिसके घर में बंधी हो उसको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं बोलो? है कामधेनु गाय जिसके घर में बंधी हो, आपने सुना है कि नहीं? वशिष्ठ के आश्रम में क्या था? कामधेनु गाय नंदी थी, नंदिनी, नंदी, नंदिनी क्या एक ही चीज है? नंदिनी थी। तुम लोग जो है नंदी शब्द का अर्थ सांड समझ रहे होंगे, इसलिए मेल फीमेल कहो ना, और क्या, नंदिनी थी। चलो कामधेनु गाय हमने कहा था, कामधेनु गाय थी, और उसी से वशिष्ठ जी सब कुछ योगक्षेम किया करते थे। इतना बड़ा गुरुकुल था, उनको प्रेमपुरी आश्रम में आकर डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं थी। थी बोलो सिमन भाई, वशिष्ठ जी आए प्रेमपुरी आश्रम डोनेशन मांगने? आत्मानंद तो आया होगा, आश्रम चलाना है ना आत्मानंद को, है आत्मानंद को आश्रम चलाना है, गुरुकुल चलाना है, वृद्धाश्रम चलाना है, वो तो डोनेशन मांगने आया होगा। लेकिन वशिष्ठ जी आए, क्यों आएंगे भाई? कामधेनु गाय है, वो तो क्या उनको जो संकल्प करो वो पूरा हो जाए। अब कामधेनु गाय में वो शक्ति कहां से आ गई? क्योंकि उसके बछड़े ने शिव की सेवा की, तो वो शिव भक्ति का, शिव जी की सेवा करने का फल मां को भी प्राप्त हो गया, और वो शक्ति उसको आ गया कि उसके सामने बैठकर जो कल्पना करे वो वस्तु उपलब्ध हो। तो वो भगवान शिव के चरण में, क्या वो कामधेनु गाय की शक्ति नहीं है क्या? अब वो चरण की सेवा जिसको प्राप्त हो, सान्निध्य जिसको प्राप्त हो, उसको फिर क्या अन्य फलों के लिए अन्य देवताओं की उपासना करने की जरूरत पड़ेगी? ये देख लो गीता में कहा है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति यदवद तदवद कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। हाँ, मुमुक्षुओं की सारी कामना तो परमात्मा में पहुंचने के बाद सब कामना शांति को प्राप्त हो गई, अब कामना कोई रहा ही नहीं। जैसे सारे नदी दौड़ दौड़ कर समुद्र में पहुंचते हैं, और समुद्र में पहुंचने के बाद नदियों की गति रुक जाती है, इसी तरह जीवात्माओं की मन की वृत्ति जो काम्य पदार्थों के प्रति की कामना वृत्ति है, वो परमात्मा को प्राप्त होने के बाद वो काम्य वृत्ति खत्म हो जाती है, कुंठित हो जाती है। अब वो भाव उपमन्यु को प्राप्त हुआ। पार्वती के बारे में भी यही है, आए कथा है पुराण में, भगवती पार्वती पहले जन्म की सती और दूसरे जन्म में पार्वती, उन्होंने निश्चय कर लिया कि शिव के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, और उसके लिए उन्होंने घोर तपस्या किया। तो एक बार भगवान शिव खुद गए कि क्या ये मेरे अलावा और किसी को नहीं चाहती है, मुझे ही चाहती है, देखे तो सही। रूप बदलकर पहुंच गए और पार्वती के सामने शिव की बड़े भारी निंदा की। बड़े भारी निंदा की शिव जी की उन्होंने, अरे वो भूत प्रेतों के साथ रहता है, उनके साथ तो कैसे रहेगी, है उसको छोड़ दे, उसका भजन करने छोड़ दे, शादी करनी हो तो मेरे से कर। उस भूत प्रेत लेकर चलता है, न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना। बड़ी निंदा कर दी। तो सती ने भी यही कहा है जो उपमन्यु ने जवाब दिया है, मेरे सामने ऐसी बात मत करो, तुम यहां से चले जाओ। शिव को छोड़कर मैं किसी अन्य को स्मरण कर ही नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती हूं। और तुम ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हें तो मैं मार नहीं सकूंगी, मैं अपने शरीर को, क्योंकि मैंने शरीर को परित्याग करने का प्रैक्टिस किया है। किसने? तुम लोगों ने नहीं, पार्वती ने। उन्होंने ये ट्रेनिंग कहां लिया था बोलो? जब सती थी तब लिया था कि नहीं? दक्ष के सामने, दक्ष के यज्ञ में स्वयं अपने योग अग्नि से प्राणायाम करके अपने चित्तवृत्ति को अग्नि में धारणा की और अग्नि, अमूर्त अग्नि वहीं मूर्त हो गया और शरीर प्रदग्ध हो गया। वो ट्रेनिंग तो, वो अभ्यास तो पार्वती को है ना।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Richam Vacham Prapadye Mano Yajuh Prapadye शामे प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागो यः सहजो मयि प्राणः

स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। 2007 एवं 2008 इस एक वर्ष में हम लोग स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज के स्वर्ण निर्माण महोत्सव को मना रहे हैं। इसी उपलक्ष में भागवत एवं स्वाध्याय प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। निर्वाण के द्वारा निर्माण तक पहुंचना, निर्वाण तो सभी के जीवन का लक्ष्य है ही। निर्वाण मतलब कि जो हमारे जीवन में अनादिकाल से अविद्या वासना कामना जो पुरत्रय है, पुरत्रय का अर्थ है शरीरत्रय, तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो हमारा अन्नमय है, इसका आधार सूक्ष्म शरीर है जिसमें पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके समुदाय का नाम सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा है अविद्या शरीर जिसको कहते हैं कारण शरीर। तो स्थूल शरीर की प्राप्ति प्रारब्धानुसार होती है। प्रारब्ध एक कर्म विशेष का नाम है जिसको आप प्रारब्ध कहते हैं, नसीब भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं, लक भी कहते हैं, सब एक ही चीज है। बहुत सारे ढेर कर्म होते हैं पर जिन कर्मों के द्वारा हमें पांच भौतिक शरीर मिलता है, जिन कर्मों को इस शरीर से भोगा जा सकता है, चाहे वह सुकृत कर्म हो या दुष्कृत कर्म हो, उस कर्म समुदाय का नाम प्रारब्ध है जिसके अनुसार हमारा शरीर बनता है, शरीर का कारण है। तो प्रारब्ध का संबंध केवल स्थूल शरीर के साथ होता है, परंतु पुरुषार्थ का संबंध देहत्रय से है, स्थूल से भी है, सूक्ष्म से भी है, कारण से भी है। यदि आप केवल इस शरीर के द्वारा धनार्जन करें तो इस देह की यात्रा अच्छी प्रकार से चलेगी, परंतु धन के साथ धर्मानुष्ठान करें, वेदांत का चिंतन करें, तो जब ज्ञान होगा तो विद्या शरीर का नाश होगा, उपासना संतःकरण निर्मल होगा। तो पुरुषार्थ का संबंध देहत्रय से है, प्रारब्ध का संबंध केवल स्थूल शरीर के साथ है। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम है त्रिपुरारी। ये जो तीन पुर है ना, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इन तीनों शरीर से जीवात्मा को हटाकर उसके अपने स्वरूप को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी भी है। तो निर्वाण तभी मिलता है जब हम ये जो देहत्रय के बंधन में है, स्थूल शरीर के बंधन में है, सूक्ष्म शरीर के, सूक्ष्म शरीर तब तक स्थायी है जब तक मोक्ष नहीं होता है। स्थूल शरीर तो बदलता है, परिवर्तनशील है, बस जो है शरीर छोटा, शरीर से आत्मा निकल, स्थूल शरीर समाप्त, परंतु जो सूक्ष्म शरीर है यह तत्व ज्ञान पर्यंत, मोक्ष पर्यंत स्थायी है। इसका ज्ञान से ही केवल नाश होता है,
तब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर बना रहेगा। सूक्ष्म मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और यही ज्ञान के कारण भी है। तो जो निर्वाण है, निर्वाण को सभी चाहते हैं, परंतु जो सूक्ष्म शरीर में अनादि काल से अनंत कर्मों के जो फल हैं, उन फलों को भोगने की जो इच्छा है, उसी का नाम वासना है। तो वासना कामना रूपी जो बाण है ना, वह चुभे हुए हैं हमारे अंतःकरण में, और जब वह तत्व ज्ञान से निकल जाए तो समझना कि निर्वाण। तो स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज के निर्वाण महोत्सव को मनाते हुए हम लोग अपने जीवन का निर्माण करते हैं। ये मकान दुकान तो निर्माण खैर होता ही है, ये तो दूसरी बात है, पर इसके साथ में जीवन का, सच्चरित्र का, अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो हम लोगों ने शिव महिमन में 14वें श्लोक 13वें तक विचार हुआ है, आज 14वां श्लोक है। 14वें श्लोक के पहले तीन युगों की कथाओं को बतला दिया, सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग की कथा बतलाई कि भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा के सम्मुख ज्योतिर्मय पिंड रूप से आविर्भूत हुए, यह सतयुग की कथा थी। दोनों के मध्य में कला हो गया कि कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ, आज भी होता है ना, कौन बड़ा कौन छोटा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जगत का पिता हूं, सर्जन करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा भी पिता हूं। विष्णु भगवान ने कहा यह बात तो ठीक है, तुम जगत के जरूर पिता हो, परंतु तुम्हारा पिता मैं। ब्रह्मा जी ने तर्क दिया, यदि तुम जो है मुझे बना लेते तो जगत भी बना सकते थे, इसीलिए तुम हमारे पिता नहीं हो सकते, बल्कि मैं तुम्हारा भी पिता हूं। ये पितृत्व को लेकर झगड़ा छिड़ गया। जब दोनों में बहुत विवाद हो गया तो भगवान शंकर दोनों के सामने ज्योतिर्पिंड रूप से आविर्भूत हुए। तो इस कथा को वहां बतला करके सतयुग की कथा को, लीला को बतलाया। इसके बाद त्रेता की कथा आई रावण की, कि रावण किस प्रकार से भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया, और वरदान पाने के बाद स्वयं कैलाश गया अपने भुजाओं को अजमाने के लिए, कितना बल है। इसके बाद द्वापरांत की कथा है बाणासुर की। अब जो है 14वें श्लोक में आपको पौराणिक कथा बतलाएंगे, इसका संबंध पुराण से है। 13वें श्लोक में बतलाया था, श्लोक निकाल लीजिए, 13वां श्लोक, के अंतिम चरण में कहा था, श्री महिमन की विशेषता है कि प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण में श्लोक के सार बात को बतलाते हैं, कहीं भी देख लीजिए। तो अंतिम में कहा था कि न कस्यापि उन्नत्यै भवति शिरस्त्वयि अवनति, त्वयि अवनति शिरसः कस्यापि उन्नत्यै न भवति, आपके चरणों में सिर झुकाना, अवनति किसके उन्नति के लिए, विकास के लिए नहीं होता है, अर्थात सबके विकास के लिए होता है। ये जो मनुष्य का सिर है, यह हमारे शरीर में प्रधान अंग है, परंतु देहाध्यास के कारण मनुष्य सिर विषयों में तो झुकाता है, पर भगवान के चरणों में नहीं झुकाता। विषय मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये विषय है। विषय शब्द की व्युत्पत्ति है, विशेषेण सिनोति बधनाति इति विषयः,
बी उपसर्ग है, शिया बंधने धातु है, शिया धातु बंधन अर्थ में होता है। तो विशेष प्रकार से या विविध प्रकारेण सिनोति बंधनाती, तो नाना प्रकार से जीवात्मा को बांधे उसका नाम है विषय, और विषय से सुख आज तक किसी को नहीं मिला है, न मिलेगा न मिल सकता है। परंतु जब भी हम प्रातः काल उठते हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारी इंद्रियां विषय को ही ग्रहण करती हैं। इंद्रियों का दोष है, परांचिखानी व्यतिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्य दिनांतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मा नमैच्छत। कोई धीरा आत्मा की जिज्ञासा करता हुआ इंद्रियों को वश में करके उस आत्मा का साक्षात्कार करता है, तो स्वयंभू नहीं हमारे इंद्रियों को बहिर्भूत कर दिया, हिंसित कर दिया। यदि आपको विषय से बंधन तकलीफ दुख हो रहा हो तो सबसे बढ़िया उपाय है कि वहां से आप अंतर्मुख हो जाएं, और जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे ये तब तक विषय जो है हमें व्यथित करते रहेंगे। क्योंकि विषय का लक्षण यही है, जो नाना प्रकार से अपने आप में बंधन करे उसका नाम विषय है। और मनुष्य जब विषय से व्याकुल हो जाता है तो फिर जैसे पक्षी आकाश में उड़ते उड़ते थक जाती है, तो थकने के बाद पक्षी अपने पंखों को फैला करके घोंसले में प्रवेश कर जाती है। ऐसे जागृत स्वप्नावस्था के विषयों को सेवन करते करते जब हम थक जाते हैं तो सुषुप्ति स्थान में जाते हैं, इसका नाम संप्रसाद है। असुसुप्ति में जाने के बाद कोई वहां विषय नहीं होता है, विषय से जब सुख हासिल नहीं हुआ या जीवात्मा थक गया। जीवात्मा किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा, विद्यारण्य स्वामी ने पंदसी में अर्थ किया है कि जीवात्मा में तीन चीजें होती हैं, सूक्ष्म शरीर, चैतन्य का आभास और वह जो चेतन अधिष्ठान है, तीनों के समुदाय का नाम है जीवात्मा। जैसे कि घड़ा में जल है, जल में सूर्याभास है और सूर्याभास का अधिष्ठान सूर्य। यदि घट में जल न हो और जल में सूर्य का आभास न पड़े और गगन में सूर्य न हो तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर तीनों के समुदाय का नाम है जीव। उनका श्लोक है उनकी भाषा में, चैतन्यम यत अधिष्ठानम, नंबर एक चैतन्यम यत अधिष्ठानम, दूसरा है लिंग देहश्चय पुनः, लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है चैतन्यम यत अधिष्ठानम तत्संगम जीव उच्चते। स्वामी विद्यारण्य की भाषा में इसके संग को समुदाय को जीव कहते हैं। चैतन्य जिसका अधिष्ठान है, जो लिंग देह है और फिर चिदाभास चैतन्य का आभास पड़ता हो, इन तीनों के समुदाय को जीव कहते हैं। तो यह जो जीवात्मा है यह सीमित अहंकार प्रथम करता है। सीमित मतलब अयम अहम अस्मि, अयम के साथ अहम का तादात्म्य अध्यास हो गया। जैसे अग्नि जलाती है परंतु अग्नि का लोहे के साथ इतना तादात्म्य अध्यास हो जाता है कि हम लोग कहते हैं कि लोहा जला रहा है। लोहे में दग्धित सामर्थ्य नहीं है, फिर भी तादात्म्याभ्यास से लोहे में दग्धित्व का हम लोग का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यहां पर भी
इतना देहाध्यास हो गया, अयम का अहम के साथ तादात्म्याध्यास हो गया। अयम मतलब कि यह जो पांच भौतिक शरीर और अहम मतलब कि शोधित जो चैतन्य है, जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। त्वम पद का वाच्यार्थ तो यह शरीर कहलाता है और त्वम पद का लक्ष्यार्थ है साक्षी कुटस्थ, जिसको आत्मा कहते हैं। तो अयम अहम अस्मि इस प्रकार के अध्यास होने से अभिमान पैदा होता है। अयम मतलब यह जो दिखाई दे रहा है 3.5 हाथ का शरीर, उसमें अध्यास कर लिया कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं सेठ, मैं शूद्र। इसके बाद में उसकी कुशलता का अभिमान कर लिया, फिर जाति का कर लिया, देश का कर लिया, मैं अमेरिकन, मैं इंडियन, मैं जापानीज, ये तरह तरह का अभिमान है। तो जैसे ही अयम अहम अस्मि ऐसा अभिमान हुआ, इस देहाध्यास अभिमान हुआ, अभिमान होने के बाद फिर मनुष्य अपना आपा खो देता है और अभिमान के चक्कर में पड़कर अपने जीवन में भटकता रहता है। अभिमान हुआ कि बस संसार का चक्कर काटते रहो, और अभिमान से जीवन भी यह चल रहा है, बस थोड़ा सा आपको करना है, कुछ करना नहीं, अभिमान के आगे स्व लगा देना है। जो अभिमान है उसके आगे हमें स्व जोड़ देना है, तो बन जाएगा स्वाभिमान। इसी स्वाभिमान को महावाक्यों में अहम ब्रह्मास्मि कहा है। अहम अस्मि इतना तो आप जन्म से जान रहे हैं, कुछ तो जन्म से सीखा, इसके बाद माता पिता सिखा दिए कि देख तू मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा। इसके बाद विद्यालय में कुछ सीखा कि मैं डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर। कुछ समाज ने सिखा दिया तुम ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के हो। कुछ देश ने सिखाया कि तुम इंडियन हो, जापानीज हो। तो अहम अस्मि यह तो स्वाभाविक है, इसमें एक ब्रह्म को जोड़ दें, स्व को जोड़ दें, तो बन जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। तो स्वाभिमान से तो मनुष्य का जीवन विकसित होता है, हमारा जीवन निर्माण होता है, मतलब निर्माण से निर्माण की तरफ बढ़ेंगे। वैसे निर्माण शब्द का गीता में अर्थ ब्रह्म किया है कि योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, गीता में आता है ना। ब्रह्म निर्वाण शब्द की जब उत्पत्ति किया भगवान शंकराचार्य ने, तो अर्थ किया ब्रह्मैव निर्वाण ब्रह्म निर्वाण, जो ब्रह्म है वही निर्वाण है, कर्मधारय समास। ऐसा नहीं कि ब्रह्म अलग निर्वाण अलग, दोनों एक ही चीज है। तो निर्वाण के साथ हम लोग अपने जीवन का निर्माण करें, मस्तिष्क का निर्माण करें, यही जो है इस निर्वाण उत्सव के मनाने की सफलता है। तो यह जो अभिमान है, इस अभिमान को यदि हम भगवान के चरणों में झुका दें तो स्वाभिमान हो जाता है, और स्वाभिमान होने के बाद उसके बाद हमारा जीवन विकसित हो जाता है। यह बात बतलाया 13वें श्लोक के अंतिम में, न कस्यापि उन्नते, अर्थात सबके उन्नति का यह साधन है। अब यहाँ बतला रहे 14वें श्लोक में जो पौराणिक कथा है, इसका उच्चारण पहले कर लें। अकांड ब्रह्मांड क्षय

0: पहले इसका शब्दार्थ देख लें। त्रिनयना इस संबोधन है, भगवान शंकर के तीन नयन है, तीन नयन और किसी देवता के नहीं है, चाहे भगवान विष्णु हो या श्री कृष्ण हो या राम हो या ब्रह्मा जी हो, त्रिनयन केवल भगवान शंकर आशुतोष हैं। इनका एक विशेष नाम आशुतोष भी है, आशु शीघ्रम तुष्यति कुप्यति वा, बहुत जल्दी खुश भी होते हैं, बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं, क्रोध भी बहुत जल्दी इन्हें आता है। तो त्रिनयन का अर्थ है सूर्य चंद्र और तीसरा जो ज्ञान नेत्र है, हे त्रिनयन, और तीसरा अर्थ यहां पर अग्नि व्यर्थ करते हैं। ज्ञान मतलब वेदांत के दृष्टि से तीसरा है ज्ञान नेत्र, और भौतिक दृष्टि से अग्नि अर्थ करते हैं। सूर्य चांद तो मशहूर है और तीसरा अग्नि, ये तो भौतिक व्यवहारिक अर्थ है, परंतु वेदांत के दृष्टिकोण से स्वयं मधुसूदन सरस्वती ने अर्थ किया है विवेक अग्नि, ज्ञान अग्नि। तो हे त्रिनयन, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा विधेय। कांड बोलते समय को, अकांड मतलब कि असमय, ब्रह्मांड के विनाश को देखकर देवता और असुर चकित हो गए, अचंभे में पड़ गए, तब आपने कृपा करके विषम संधृत्वत उस हलाहल विष का उपसंहार किया, पान किया, इससे तव कंठे कलमाशः आसित, आपके कंठ में वह एक प्रकार से नीला धब्बा पड़ गया। सस्त्रियम न कुरुते, वह आपके शोभा को ही बढ़ा रहा है। अहो भुवन भय भंग व्यसनिनः विकार अपि श्लाघ्य, संसार के भय को भंग मतलब नाश करने का स्वभाव है जिसका, भगवान शंकर संसार के भय को भंग मतलब नष्ट कर दिया। भंग का अर्थ भांग नहीं करना, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ कर लेते, बहुत अच्छे से लोग हमको मिले। कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा में मैं गया हुआ था, परंतु दुर्भाग्य से जिस महात्मा के साथ गया जो हम यात्रा करवा रहे थे, मरवक यात्रा के थे, उन्होंने वहां के महंत को बदला दिया था। दंडबेश्वर जो वहां का प्रसिद्ध मंदिर है, उनके उस महंत को बदलाया था कि भंग, भंग का अर्थ यहाँ पर भांग होता है। भगवान शंकर भंग लिखा ना, व्यसनिना, भांग के व्यसनी थे, आदि थे। जब मैं पहुंचा तो मुझसे पूछे कि आप आचार्य हैं कैलाश के, आप बदले इसका अर्थ क्या है। और संयोग से महात्मा वही साथ में बैठे जो हम यात्रा करा रहे थे, हमने कहा कि यहाँ पर समास करो षष्ठी, भुवनस्य भय भुवन भय, संसार के भय को भंग मतलब नाश करने का व्यसन स्वभाव है जिसका। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष गर्भित भवरी समास है। बड़ा खुश हुए, हमारे सामने बहुत डांटे महात्मा जी को, बोले कि तुमने मुझे बताया था कि यहाँ भांग है, यहाँ तो भंग का अर्थ है नाश। तो कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है ना, तो लोग कहते भगवान शंकर भांग पीते, तो ऐसा कुछ नहीं। बताइए, जब उसका शरीर चिन्मय बपू है, चिदंबर है, तो वहां पर भांग की कहां गुंजाइश है। हाँ, श्रद्धा भक्ति से भेंट करे दूसरी चीज है, क्योंकि शिव भक्त चरित्र में एक ऐसी कथा आती है, एक धीर नामक भील था, बड़ा ही तेजस्वी था।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 30.

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரியோபனிஷத் presented by Swami Sri Ananda Nandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: कहने लगी एक तो ये, फिर आगे और कहा, सौ वर्णई लांग लाग्रैर विलिखति वसुधा अर्कमूलस्य हेतु। आगे संकेत किया, जैसे किसान लोग होते हैं तो क्या करते हैं, भूमि का आकर्षण करते हैं और सुंदर उसमें फसल उगाते हैं। अब भूमि को निर्मित करते हैं, भूमि को भुरभुरा बनाते हैं, तो किसके द्वारा, हल के द्वारा। अब वो हल किसी के पास लोहे का हल होता है, किसी के पास काठ का होता, लेकिन फाल लोहे का होता है उसमें। लेकिन यहां क्या कह रहे, सौ वर्णई, आपके पास हल है, आप भी एक किसान हो, क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात समझ लीजिए, तो आपके पास भी हल है, लेकिन आपको जो हल दिया है वो कैसा है। कहने लगे उसमें जो फाल है वो सुवर्ण का है, ऐसे पवित्र वस्तु सुवर्ण, ऐसे सुवर्ण का जो है फाल दिया गया है, और किस लिए, का भूमि को बनाने के लिए, जिसमें सुंदर फसल पैदा हो। तो कहने लगे वो तो हमको दिया और उसका हम प्रयोग भी कर रहे हैं, भूमि को जोत भी रहे हैं, लेकिन जोत करके भूमि तैयार करके हम उसमें वपन क्या कर रहे हैं, बीज क्या लगा रहे हैं, फसल क्या लगा रहे हैं। तो क्या कहा, विलिखति वसुधा अर्कमूल से है, तो हम उसमें आग का बीज बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं, आग का। और आग का बीज आप जानते हो तो समझते चलो, यहां जो कहा पहले, स्थाल्याम वैदूर्यमय्याम पचत च लसुनम इंद्र नई चंद्रोत्थई, हमको उस परमात्मा ने कृपा करके सर्वत्र जो है लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम, इसकी दुर्लभता की चर्चा की गई, और ये इतना हीरे जवाहर की कीमत के समान कीमती है, क्योंकि हम इससे चाहे वही हम प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं, वो विचार करने का ये उत्तम साधन है। लेकिन हम कर क्या रहे, तो क्या संकेत किया, कहा लहसुन पका रहे। लहसुन का मतलब क्या, लहसुन यद्यपि गुड़ भी उसमें बहुत है, इसलिए कैप्सूल भी निकाल दी, लेकिन एक उसमें बड़ा दुर्गुण है। वो दुर्गुण क्या है, जिस पात्र में आप लहसुन को रख दो, फिर उसको उस पात्र से निकाल दो और उस पात्र को धो दो, लेकिन फिर भी उस पात्र में से बदबू जाती, वो बदबू आती, उसके संस्कार जल्दी निवृत्त होते नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये लहसुन क्या है, लहसुन कोई और नहीं, यहां संकेत वर्तनी करते हैं कि अधर्म, अन्याय, विपरीत दिशा में जाना है, असत कर्मों को करना, यही क्या है, यही लहसुन। शरीर मिला है हमें शुभ कर्मों को करने के लिए, और शुभ कर्म के द्वारा हमें शुभ गति प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, स्वस्वरूप को जानने के लिए, लेकिन उस शरीर से हम क्या कर रहे हैं। कहने लगे अधर्म है, अधर्म के द्वारा हम सुख चाहते, अन्याय के द्वारा हम सुख चाहते, तो इसलिए कहा। और वो अधर्म क्या करता, जैसे उसकी लहसुन की बदबू नहीं जाती, वैसे ही इस अधर्म के संस्कार भी जल्दी पीछा छोड़ते नहीं। वो क्या करते हैं, वो अधर्म के संस्कार पुनः पुनः हमें इसी संसार के अंतर्गत जो है लगाए रहे, वो जल्दी समाप्त